सुप्रभात। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की तिथि 25, तदनुसार 15 मई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज UAE पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और UAE की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। UAE अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अनिल धीरूभाई अंबानी NDA समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई

खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रवीण सेठी। आज कार्यक्रम के तहत हम सुनने वाले हैं नए बाग लगाने के तरीके एवं विधि के संबंध में। जी हां, नए बाग लगाने का मतलब है 15 से 25 साल के भविष्य की योजना बनाना। इसलिए नया बगीचा लगाने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। सर्वप्रथम बात मिट्टी एवं जलवायु की। बाग लगाने से पहले मिट्टी पर विशेष ध्यान दें कि मिट्टी की गहराई कम से कम 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए और मिट्टी की संरचना उचित होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 तथा मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 0.4% से अधिक होनी चाहिए। हमेशा ऐसी किस्मों का चयन करें जो तापमान सहन कर सके। यदि बगीचा लगाने का स्थान नया है या उस पर जंगल झाड़ी लगी है तो उसे काटकर साफ कर ले और मिट्टी पलटने वाले हल, हैरो, कल्टीवेटर से गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा करके खेत को समतल कर ले। साथ ही सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। फलदार वृक्षों को प्रारंभिक 2 वर्षों में उचित जल देना आवश्यक है, विशेषकर गर्मी के मौसम में। जंगली जानवर और इंसान से बचाव के लिए सुरक्षा के तौर पर बाड़ या कटीले तार से घेरना जरूरी है। गर्मियों में हीट स्ट्रोक और सर्दियों में पाले से बचने के लिए वायुरोधक पौधे दक्षिण पश्चिम दिशा में अवश्य लगाएं। श्रोता मित्रों, करौंदा और आम की आम्रपाली किस्मों को 2x2.5 मीटर तथा अनार, किन्नो, कागजी नींबू, अमरूद, बेल, संतरे को 6x6 मीटर तथा आंवला, आम, लसोड़ा, जामुन को 8x8 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। फलों की प्रजाति के चयन के बाद उचित दूरी पर निशान बनाने चाहिए। छोटे फल वृक्षों जैसे करौंदे के लिए 60x60x60 सेंटीमीटर तथा अन्य फलदार वृक्षों के लिए 1x1x1 मीटर का गड्ढा खोदें। ऊपर की आधी मिट्टी को एक तरफ और बची हुई आधी मिट्टी को दूसरी तरफ रख दें। इन गड्ढों को खोदने का उपयुक्त समय मई और जून है। तेज धूप से मिट्टी का सौरीकरण करना चाहिए। जून में वर्षा आने के पूर्व इन गड्ढों को 30 से 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद तथा 30 से 50 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस का घोल 10 लीटर पानी में मिलाकर प्रति गड्ढे में डालें। इससे दीमक के प्रकोप से पौधों को सुरक्षित रखा जा सकता है। गड्ढे भरते समय ऊपर की आधी मिट्टी पहले डालें तथा शेष नीचे की आधी मिट्टी बाद में डालें, अर्थात नीचे की मिट्टी ऊपर तथा ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाए। इस प्रकार भरे हुए गड्ढे की मिट्टी भुरभुरी होने के कारण रोपित फल वृक्षों की जड़ों का बढ़ाव बहुत तेजी से होगा और फल वृक्ष 100% स्थापित होंगे। मृदा नमी के संरक्षण के लिए बंधीकरण पौधों के बीचों बीच में छोटे गड्ढे या मल्चिंग का प्रयोग करें। इससे वर्षा का पानी ज्यादा दिनों तक खेत में नमी बनाए रखता है। वर्षा ऋतु में उद्यान लगाने से पूर्व चयनित प्रजातियों एवं किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ले। आंशिक पूर्व भुगतान कर पौधों को सुरक्षित किया जाए तो बेहतर होगा। सरकारी पंजीकृत या विश्वसनीय नर्सरियों, राज्य बागवानी विभाग, कृषि विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों की नर्सरी से पौधे खरीदने की सलाह दी जाती है। पौधे की खरीद का बिल जरूर ले और संभाल कर रखे। पिंडी को लंबी घास, मूंज या बांस में लपेट कर रखे। इसे दूर ले जाने के लिए पिंडी को किसी टोकरी या कार्टून में ठीक से बांधे ताकि

पौधे को हिलाने पर पिंडी टूट ना जाए। यदि पौधे में बहुत अधिक पत्तियां हैं तो कुछ कम कर दे। पौधों पर पानी का छिड़काव करे और पौधों को छाया में रखे। यदि पौधों को अधिक दिनों तक रखना है तो पौधों को पिंडी सहित 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। इसे किसी गहरे गड्ढे में गाड़ दे और पानी का छिड़काव करते रहे। फलों के पेड़ लगाने के 3 से 4 साल बाद फल देने लगते हैं। यदि बीच में सिंचाई का कोई साधन हो तो सब्जियों की खेती की जा सकती है, अन्यथा सामान्य तौर पर जो फसल आप चाहते हैं उसकी खेती की जा सकती है। यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध ना हो तो हरा चारा प्राप्त करने के लिए घास एवं दलहन चारा फसलों की भी खेती की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, इस प्रकार हम बाग लगाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आज का चिंतन। आसानी से मिलने वाली हर वो चीज़ हमेशा तक नहीं रहती, जो हमेशा तक रहती है वो आसानी से नहीं मिलती। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवा रहे हैं ये देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए कार्यक्रम वंदना में सुनवाते हैं भक्ति रचनाएं। प्रथम प्रस्तुति है श्री रूपा की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंजलि जैन और साथियों का गाया ये भक्ति गीत। अब आइए सुनवाते हैं एक बार फिर से श्री रूपा और साथियों को।

श्रोताओं, श्री रूपा और साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम वंदना अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। एक बार सुंदर पर्वत नदी और वनों को देख नारद जी का भगवान के चरणों में असीम प्रेम जागृत हो गया। यहां तक कि दक्ष प्रजापति द्वारा नारद को दिए गए श्राप की गति भी रुक गई और नारद समाधि में लीन हो गए। नारद की समाधि से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो किसी प्रकार नारद की समाधि को भंग करे। कामदेव ने नारद की समाधि को भंग करने के अनेक प्रयास किए पर असफल रहा। अंत में भयातुर कामदेव ने नारद के चरण पकड़कर उनकी स्तुति की। इस घटना के बाद नारद के मन में अभिमान जागृत हुआ कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं।

साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत में गजलें। 7:20 पर लोक गीतों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और 7:35 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुरांजलि। 7:50 का हमारा समय होता है स्वास्थ्य चर्चा का। सुबह 8:00 समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 का हमारा समय होगा प्रादेशिक समाचार का, जो कि रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर कार्यक्रम गांधी चर्चा प्रसारित किया जाएगा और सुबह 9:00 आप सुनेंगे हिंदी में कार्यक्रम आकाशवाणी माफ करेंगे सुबह 9:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 9:05 पर सुनते हैं कार्यक्रम सुरंजना में आज एक ही गायिका को। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति होगी। सुबह 10:00 हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होगा। सुबह 10:20 पर हमारे श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह 11:00 और दोपहर 12:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 11:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर और 12:05 पर भावगीत हम आपको सुनवाएंगे। 12:30 का समय होता है शास्त्रीय संगीत का। दोपहर के 1:00 हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। दोपहर के 1:20 और 2:30 पर हमारे श्रोता आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। दोपहर के 2:00 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 2:55 का समय होता है प्रादेशिक समाचार का, जो कि रिले किया जाता है आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अपराह्न के 3:00 एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और अपराह्न 3:30 पर आप सुन सकते हैं उपशास्त्रीय संगीत। 3:45 पर श्रोता आनंद लेंगे झारखंड के लोकगीत का। संध्या 4:00 एवं 5:00 समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर आप सुनेंगे कव्वाली अताउल्ला खान से। 4:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। संध्या 5:02 पर युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण होगा और 5:30 पर आप सुनेंगे कल कारखाने। संध्या 6:00 हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। 6:10 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। 6:30 का समय होगा कृषि जगत का। संध्या 7:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया जाएगा। 7:10 पर आप सुन सकते हैं जिले में आज कल। 7:15 का हमारा समय होता है बांग्ला कार्यक्रम का। 7:45 पर आज आप सुनेंगे कल्याणी।

रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से आप सुन सकते हैं रात्रि 9 बजे न्यूज एट नाइट और 9:15 पर स्पॉटलाइट। 9:23 पर करंट अफेयर्स का प्रसारण होगा। रात्रि 10 बजे आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

0: श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर।
1: हमारे बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। अब आइए सुनवाते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुनेंगे गुलकारा आशा भोसले की गाई गजलें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुलकारा आशा भोसले की गाई गजलें। इसी के साथ हमारा आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
5: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। अब आइए सुनवाते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे शारदा सिन्हा और साथियों का गाया भोजपुरी गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा से भोजपुरी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:35 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरांजलि। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रविंद्र संगीत जोयता भौमिक सिंह।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जोहिता भौमिक से रविंद्र संगीत। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

और अब लीजिए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा के आज के इस अंक में हमारे श्रोता सुनेंगे टॉन्सिल की समस्या और समाधान। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अजय गुप्ता, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज बातें टॉन्सिल के बारे में। टॉन्सिल है क्या और इसका घटना या बढ़ना क्या होता है और यह किस तरह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इन तमाम बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं ENT विशेषज्ञ डॉक्टर अजय गुप्ता। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि टॉन्सिल वास्तव में है क्या।
1: टॉन्सिल एक तरह का लिम्फोइड टिश्यू है, जिसको कि हम जैसे गले में गर्दन में बहुत सारे लिम्फ नोड होते हैं, उसी तरह का एक बॉडी गार्ड टिश्यू है जो कि गले के पीछे या मुंह के रास्ते में पीछे की तरफ गले के एंट्रेंस पे होता है
0: जी।
1: और ये एक तरह का सैंपल का काम करता है, जो भी हम कुछ खाते हैं उसका सैंपल लेता है। जैसे बचपन में जब बच्चा आता है इस दुनिया में तो कोई भी चीज खाने पीने की उसके लिए एकदम नया चीज है, तो उसके लिए कोई भी चीज के अगेंस्ट में वो एक तरह का एंटीजन का काम जो भी करता है खाना पीना,
0: अच्छा।
1: उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है
0: जी।
1: तो ये एंटीबॉडीज बनाना फूड का सैंपल लेके ये उसका काम है।
0: तो ये टॉन्सिल का बढ़ना क्या है?
1: टॉन्सिल का बढ़ना मेनली है कि जब बार बार हम लोग जिसके लिए उसके लिए एंटीबॉडीज बन रही हैं और खाने में कोई भी चीज उसको जो एंटीजन का काम कर रही है और उसमें जब एंटीबॉडीज बन रही हैं, तो वो एंटीजन एंटीबॉडी जब आपस में मिलते हैं तो वो आपस में कुछ रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन का जो साइट है या जगह है वो टॉन्सिल होता है। तो ये जो रिएक्शन के वजह से टॉन्सिल का साइज बढ़ना या मेन उसमें सूजन आना,
0: अच्छा।
1: टॉन्सिल बढ़ना एक अलग चीज है और टॉन्सिलाइटिस एक अलग चीज है, और जब ये एक्यूट या त्वरित फेज में होता है तो इसको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, जिसमें कि टॉन्सिल में सूजन आने की वजह से बच्चे को खाने पीने में तकलीफ और निगलने में तकलीफ और बुखार, कई बार वोमिटिंग, ये भी सिम्टम्स आते हैं। ये बात काफी कॉमन है क्योंकि हम लोग एक जिस जलवायु में रहते हैं यहाँ पर एक्सपोजर टू द हॉट एंड कोल्ड वेरिएशन काफी है, एटमोसफेयर का कह लीजिए चाहे खाने पीने की चीजों में कह लीजिए, तो इससे बॉडी एक्चुअली सेंसिटिव होती है। ह्यूमंस, हम लोग जो आदमी प्राणी है ये वार्म ब्लडेड है, तो इनको बेसिक देखा जाए तो ठंडा चीज सूट नहीं करता है, बट हम लोगों को चूंकि गर्मी लगती है हम सोचते हैं गर्मी का क्या उपाय, तो एसी में बैठे, कूलर में बैठे, ठंडा पानी पिए, आइसक्रीम खाएं, फ्रिज का खाना पीना करें, तो हमको लगेगा कि ठंडक लगेगी, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बेहतर नहीं है। तो वो जब गले में जाता है तो उसके एक तरह का एंटीजन का काम करता है और वहाँ का नसों में भी सुकड़न कर देता है, जिससे कि बॉडी का डिफेंस और पुअर हो जाता है और फिर ये एंटीबॉडीज बनना और रिएक्शन बनना ज्यादा हो जाता है। ये माना गया है कि 10 साल की उम्र तक ये होना साधारण चीज है, माँ बाप को इसको ज्यादा बहुत ज्यादा गंभीरता से ना लें, क्योंकि कोई भी शरीर आया है इस दुनिया में तो सब चीजों से उसको एक्सपोजर होगा, तो उससे कुछ रिएक्शन भी होगा, तो वो एक चीज है कि जो सर्दी जुकाम गला खराब, और चूंकि गला खराब को जनरली

0: और कोई शब्द से जाना नहीं जाता है, खाली ये जाना जाता है गला खराब, इसका मतलब टॉन्सिल हो गया, जबकि गले में और भी फेरेंजाइटिस या उस तरह की भी चीजें होती हैं जिसको कि प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। खाली गले में इन्फेक्शन, दर्द होना, बुखार होना खाली टॉन्सिलाइटिस ही नहीं है। तो इसके लिए जब कोई बच्चे जो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं और 10 साल की उम्र तक पूरा एक्सपोजर नहीं हुआ या चेंज हो गया प्लेस, या बड़े होके भी उनका प्लेस चेंज होता रहा, तो कई सारे जलवायु में परिवर्तन जो उनके होते रहे 10 साल की उम्र के बाद भी, तो उससे उनको बड़ों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, इसका इलाज संभव है। सबसे सरल आसान उपाय जो बहुत समय से चला रहा है, सब घर में जानते हैं कि गर्म पानी नमक के गरगरा करना या गार्गल करना, और डाइट में थोड़ा सा जब भी होता है तो खाने पीने में रेस्ट्रिक्शन करना होता है, जिसमें ठंडा तला भुना और मिर्च मसाले वाला चीज नहीं खाना है, और ये 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना कि टॉन्सिल की समस्या कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने बताया, उनकी बातों पर यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आप टॉन्सिल की समस्या होने के बावजूद भी कुछ सावधानियां बरतेंगे तो अपने आप को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता टॉन्सिल की समस्या और समाधान। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अजय गुप्ता, जिनसे बातें कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
7: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
6: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
7: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान

0: पैसे प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजे समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री

0: परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
1: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाओ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशू को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू यूएई, द नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली टुडे। Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, Energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
5: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE saw Sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
4: On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the UAE, Deepak Mittal, said the visit of the Prime Minister is highly opportune.
6: UAE has emerged as a very close third largest trade partner for India. Our bilateral trade has crossed $100 billion after we have signed Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2022. The visit of the Prime Minister is very opportune, happening at a time when the region is going through some unprecedented times. Prime Minister has been in touch with the UAE leadership. So this is a moment when it will help and enable to express our solidarity.
4: Meanwhile, UAE's Minister of State for International Cooperation, Reem Binte Ibrahim Al-Hashmi, has said the government is looking forward to the occasion with great excitement. She said that Mr. Modi is a key figure of friendship, of long-standing partnership and a true treasure to the leadership and to the people of the UAE. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi, the Prime Minister said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में ट्रेजरी निकासी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज की ईसीआईआर। रांची, हजारीबाग और बोकारो सहित 6 जिलों में हुई है गड़बड़ी। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भ्रष्टाचार और जन समस्याओं के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय। आज सभी प्रखंडों में एक दिवसीय धरना। रांची डीसी ने तेल कंपनियों के साथ की समीक्षा बैठक। पेट्रोल पंपों पर सुचारू आपूर्ति बहाल रखने के निर्देश। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर कल रांची में शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन। विख्यात केडिया बंधु और श्रीजीत चटर्जी बिखेरेंगे सुरों का जादू। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग की ट्रॉफी का अनावरण। IPL की तर्ज पर 20 जून से शुरू होगा रोमांच का नया अध्याय। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में वेतन मद में हुई 40 करोड़ रुपए की फर्जी ट्रेजरी निकासी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने ईसीआईआर दर्ज की है। रांची, हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी से जुड़े इस घोटाले की जांच से संदिग्ध अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद राज्य के 6 जिलों में ये गड़बड़ी उजागर हुई है। प्रदेश भाजपा कोर कमेटी ने प्रदेश कार्यालय में बैठक कर राज्य सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई है। प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने बताया कि सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर आज से सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। यह कार्यक्रम 20 मई तक चलेगा।
1: राज्य सरकार की जो कार्य प्रणाली है, जिस तरह से भ्रष्टाचार नीचे तक ब्लॉक अंचल तक फैला हुआ है, उसको लेकर के जो आंदोलन का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने अभी तय किया है, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन या फिर अभी पानी और बिजली को लेकर के जिलों में प्रदर्शन, उसको लेकर के एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम है।
0: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। रांची में पेट्रोल डीजल की सुचारू आपूर्ति के लिए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने तेल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने बताया कि घबराहट में अधिक ईंधन खरीदने से पंपों पर अस्थायी दबाव बना है। प्रशासन ने कंपनियों को निर्बाध आपूर्ति का निर्देश देते हुए जनता से केवल जरूरत भर ईंधन खरीदने की अपील की है। राज्य में ईंधन संकट की अफवाहों के बीच पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने लोगों से संयम की अपील की है। धनबाद में एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने स्पष्ट किया कि राज्य में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता और सामान्य आपूर्ति है। तेल कंपनियों ने पिछले साल से अधिक ईंधन दिया है। जनता घबराहट में आकर अतिरिक्त खरीदारी न करें।
2: पेट्रोलियम पदार्थों की कोई किल्लत नहीं है। झारखंड में किसी भी प्रकार से डीजल और पेट्रोल का कोई कमी नहीं है। कंपनियां लगातार सभी पंपों को डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति कर रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें माहवारी के हिसाब से, तो हम पिछले वर्ष से ज़्यादा इस साल तेल की आपूर्ति कर रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने खूंटी में राज्य के पहले लाह बीज सेंटर की शुरुआत की। अब स्थानीय किसानों को यहीं से उत्तम किस्म की बीहन उपलब्ध होगी। मंत्री ने किसानों से संवाद कर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न आपदाओं में मिलने वाली मुआवजा राशि का लाभ उठाने की अपील की। आकाशवाणी के ताजा

0: बेहतरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में वैश्विक संकट और भारतीय युवा विषय पर एक समूह चर्चा आयोजित की गई। डॉ. अमिता कुमारी के मार्गदर्शन में शिक्षा शास्त्र विभाग के विद्यार्थियों ने वर्तमान आर्थिक चुनौतियों पर विचार साझा किए। विमर्श में युवाओं ने देश हित में सामाजिक जागरूकता, संसाधनों के संरक्षण और संयम बरतने पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने खजूरी विंघमगंज मार्ग के फ्लाईओवर को पारंपरिक सोहराई पेंटिंग से सजाया है। दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियों में झारखंड की संस्कृति और प्रकृति की झलक दिखती है। NHAI का उद्देश्य आधुनिक राजमार्गों के निर्माण के साथ स्थानीय कला और कलाकारों को बढ़ावा देना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के 1191 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयन बिना परीक्षा के 10वीं और ITI के अंकों की मेरिट पर होगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 11 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी रांची द्वारा कल शाम 4 बजे दूरदर्शन केंद्र में शास्त्रीय संगीत संध्या रागांजलि का आयोजन होगा। समारोह में देश के ख्याति प्राप्त कलाकार केडिया बंधु, पंडित मोर मुकुट केडिया, पंडित मनोज कुमार केडिया और श्रीजीत चटर्जी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसका उद्देश्य समृद्ध संगीत विरासत को बढ़ावा देना है। राज्य में 19 मई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने आज और कल रांची, धनबाद, बोकारो समेत कई जिलों में तेज हवा, बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चीन से लौटी रांची की फुटबॉलर दिव्यानी लिंडा का रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब के बच्चों और खेल प्रेमियों ने तिरंगा लहराकर उनका अभिनंदन किया। दिव्यानी ने सीमित संसाधनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर राज्य का नाम रोशन किया है। इस मौके पर दिव्यानी ने कहा कि बड़े देशों के खिलाफ खेलकर काफी अच्छा लगा।
1: अच्छा रहा, अच्छा लगा खेल के, उतना बड़ा बड़ा टीम से खेल के अच्छा लगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया, लिबोनन और चाइना, हम लोग अच्छा खेले और बहुत कम गोल खाए हम लोग उन लोग के साथ। उन लोग का गेम से लग रहा था कि हम लोग को बहुत ज़्यादा गोल मारेंगे, पर हम लोग बहुत कम खाए थे, तो अच्छा हम लोग का प्रदर्शन था।
0: रांची में झारखंड T20 क्रिकेट लीग की विजेता ट्रॉफी का अनावरण किया गया। IPL की तर्ज पर यह टूर्नामेंट 20 जून से आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और स्टार क्रिकेटर ईशान किशन के साथ JSCA अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव मौजूद रहे। मौके पर ईशान किशन ने कहा कि इस लीग से राज्य की खेल प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलेगा।
2: अच्छी टीम्स होंगी, अच्छा क्रिकेट होगा। नॉट श्योर कि पहले साल ही बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर भी निकल जाए, बट आई एम वेरी श्योर द लुकिंग एट द टैलेंट विच जो झारखंड टीम के पास है, 100% बहुत अच्छे प्लेयर्स आगे आएंगे। और जैसे अभी आप देख रहे होंगे कितने सारे प्लेयर्स अब धीरे धीरे हमारे टीम से बाहर जा रहे हैं, IPL टीम्स में जा रहे हैं, इंडियन सेलेक्टर्स को परेशान कर रहे हैं कि हमें भी लो। सो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने SIR के तीसरे चरण की घोषणा की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में 30 जून से SIR, 2,64,00,000 वोटरों की होगी जांच। प्रभात खबर लिखता है, हॉकी खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार की शिकायत, कोच सुधीर हटे। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, फर्जी निकासी की जांच ईडी करेगी, ECIR दर्ज। दैनिक जागरण के शब्द हैं, दोषी पाए गए बिजली निगम के 6 पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य

में ट्रेजरी निकासी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज की ईसीआईआर। रांची, हजारीबाग और बोकारो सहित 6 जिलों में हुई है गड़बड़ी। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भ्रष्टाचार और जन समस्याओं के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय। आज सभी प्रखंडों में एक दिवसीय धरना। रांची डीसी ने तेल कंपनियों के साथ की समीक्षा बैठक। पेट्रोल पंपों पर सुचारू आपूर्ति बहाल रखने के निर्देश। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कहा राज्य में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर कल रांची में शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन। विख्यात केडिया बंधु और श्रीजीत चटर्जी बिखेरेंगे सुरों का जादू। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग की ट्रॉफी का अनावरण। आईपीएल की तर्ज पर 20 जून से शुरू होगा रोमांच का नया अध्याय। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन लैपटॉप टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में श्रोताओं आप सुनेंगे गांधी चर्चा।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र, प्रस्तुत है गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनते हैं महात्मा गांधी के विचार और साथ ही सुनेंगे वार्ता गांधी जी की दृष्टि में बदले की भावना। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं प्रियंका सिंह।

0: श्रोताओ, गांधी जी का मानना था कि बदला हिंसा का एक अंतहीन चक्र बनाता है जो केवल विनाश लाता है, समाधान नहीं। उनका प्रसिद्ध कथन आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, ये दर्शाता है कि सच्चा न्याय क्षमा और अहिंसा में है, ना कि बदला लेने में। उन्होंने हिंसा को शांति से जीतने पर जोर दिया। गांधी जी के अनुसार हत्या का बदला हत्या या मुआवजे से नहीं, बल्कि बिना किसी बदले की भावना के स्वेच्छा से बलिदान देकर ही लिया जा सकता है। प्रतिशोध लेने की बजाय क्षमा करना और अहिंसा के मार्ग पर चलना ही सच्ची बहादुरी है। प्रतिशोध से केवल व्यक्तिगत संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन ये समाज में शांति या सुधार नहीं ला सकता, केवल हिंसा बढ़ाता है। बदला न लेकर गांधी जी ने हिंसा के शिकार लोगों को भी अहिंसा का पाठ पढ़ाया, ताकि समाज में नफरत न फैले। कह सकते हैं कि गांधी जी का बदला न लेने का दृष्टिकोण नफरत को प्रेम से और हिंसा को अहिंसा से हराने का एक दार्शनिक और व्यावहारिक प्रयास था। श्रोताओं, आज की गांधी चर्चा में आइए सुनते हैं प्रियंका सिंह की वार्ता, गांधी जी की दृष्टि में बदले की भावना।
1: गांधी जी युग निर्माता थे। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व आदर्शवादी रहा है। उनका जीवन आचरण प्रयोगवादी रहा है, जो न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रकाश स्तंभ के समान है। हालांकि गांधी जी के देश में ही उनका सर्वाधिक विरोध हुआ है, लेकिन गांधी जी के अनुयायी पूरे विश्व में व्याप्त हैं। आज संपूर्ण विश्व जहां रंग भेद, सांप्रदायिकता, धार्मिक विद्वेष, सीमा विस्तारीकरण जैसी समस्याओं से घिरा हुआ है, युद्धोन्माद की स्थिति निरंतर बनी हुई रहती है, ऐसे में गांधी की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। सत्य और अहिंसा पर आधारित उनके सिद्धांत वैश्विक भाईचारे और मानवतावाद का संदेश देती है। प्रतिशोध या बदले की भावना तो उनके सिद्धांतों में है ही नहीं, अपितु सुधार, उत्थान, आत्मिक मानसिक परिष्कार को महत्व दिया गया है। उनकी दृष्टि में बुराई को दूर करने के लिए बुरा बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसकी काट अच्छाई में ही है। गांधी जी कहते थे कि जीवन का निर्माण और जगत की रचना शुभ और अशुभ, जड़ और चेतन को लेकर हुई है। इस रचना का प्रयोजन यह है कि असत्य पर सत्य की और अशुभ पर शुभ की विजय हो। वे यह मानते हैं कि जगत का दिखाई देने वाला भौतिक अंश जितना सत्य है, उतना ही और उससे भी अधिक सत्य न दिखाई देने वाला एक चेतन भावलोक है, जिसकी व्यंजना जीवन है। फलतः वे यह विश्वास करते हैं कि मनुष्य में जहाँ अशुभ वृत्तियाँ हैं, वही उसके हृदय में शुभ का भी निवास होता है। यदि उसमें पशुता है तो देवत्व भी प्रतिष्ठित है।

का प्रयोजन यह है कि उसमें देवत्व का प्रबोधन हो और पशुता प्रतारित हो, शुभांश जागृत हो और अशुभ का पराभव हो। उनकी दृष्टि में जो कुछ अशुभ है, असुंदर है, अशिव है, असत्य है, वह सब अनैतिक है। जो शुभ है, जो सत्य है, वो शुभ्र है, नैतिक है। बचपन में घटित घटना गांधी जी के अंदर आजीवन सत्य और अहिंसा के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। अहिंसा की परंपरा भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है, लेकिन इस अहिंसा को विश्वव्यापी बनाने का श्रेय गांधी जी को है। गांधी जी ने अहिंसा का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसा भी एक महान अस्त्र है। उनकी अहिंसा मानवता पर आधारित है। फलस्वरूप किसी से द्वेष, घृणा, प्रतिशोध, बदला जैसे भाव वहाँ उपस्थित नहीं होता है। उनकी दृष्टि में अपमान का बदला अपमान से नहीं, हिंसा का प्रत्युत्तर हिंसा से नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि दूसरे के अंदर अपने बुरे कर्मों के लिए आत्मग्लानि बोध जगाना होता है। अपने आत्म संयम की परीक्षा देकर, उनके क्रूरता की हदों को लांघ कर उनके अंदर के मानवीय करुणा को जागृत करना है। लेकिन गांधी के आत्म संयम को कायरता एवं निष्क्रियता के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि दृढ़ मानसिक एवं आत्मिक शक्ति के रूप में इसका अवलोक करना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के प्रति अपनाई जाने वाली रंग भेद की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। उन्होंने अपने आंदोलन को संगठनात्मक रूप प्रदान करने के लिए कई संस्थाओं जैसे नटाल इंडियन कांग्रेस, टॉलस्टॉय फॉर्म तथा फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सफलतापूर्वक आंदोलन का संचालन किए जाने के परिणाम स्वरूप वहां की सरकार द्वारा सन 1914 ईस्वी तक अधिकांश भेदभावपूर्ण वाले कानूनों को रद्द कर दिया गया। यह गांधी जी की प्रथम सफलता थी जो उन्होंने अहिंसा के मार्ग द्वारा प्राप्त की। व्यक्तिगत अपमान को सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान में परिवर्तित कर दिया। भारतीय राजनीति में भी गांधी का पदार्पण अहिंसा रूपी अस्त्र के साथ होता है। जलियांवाला बाग जैसी नृशंस हत्याकांड के बावजूद गांधी अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के बनिस्पत अहिंसक रास्ता ही अख्तियार करते हैं। असहयोग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी सरकार की जड़ों को खोखला करना ही उद्देश्य था। विदेशी वस्तुओं तथा संस्थाओं के बहिष्कार के माध्यम से स्वदेशी विद्यालयों, संस्थाओं तथा वस्तुओं का समर्थन किया गया। राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायत अदालतों की स्थापना की गई। गांधी जी द्वारा अंग्रेजों का असहयोग कर जहां एक तरफ राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की गई, वहीं स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण पर बल देकर आर्थिक रूप से स्वनिर्भर बनाने की कोशिश। हालांकि अहिंसक आंदोलन में चौरी चौरा कांड के माध्यम से हिंसा का प्रवेश होते ही आंदोलन को स्वतः ही गांधी ने वापस ले लिया, क्योंकि उनके लिए केवल साध्य इष्ट नहीं है अपितु साधन भी इष्ट है। उनका कहना था कि यदि साध्य पवित्र और मानवीय है तो साधन भी वैसा ही शुद्ध, वैसा ही पुनित और वैसा ही मानवीय होना चाहिए। साध्य और साधन की समाज पवित्रता पर बल देना और उसका आश्रय ग्रहण करना उसकी साधना रही है। गांधी जी हिंसक प्रतिरोध को किसी भी रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं करते। गांधी अंदरूनी शक्ति की बात करते हैं, आत्म संयम की बात करते हैं, हृदय से हिंसक वृत्तियों की नाश की बात करते हैं। हालांकि गांधी निरंतर आलोचनाओं के शिकार भी होते रहे एवं उनके विचारों को अव्यवहारिक भी बताया जाता रहा, लेकिन अपनी आलोचनाओं से विमुख हो वे अपने विचारों को व्यवहारिक जामा पहनाते रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी कड़ी के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ अंग्रेजी हुकूमत को आर्थिक एवं राजनीतिक सतहों पर बिना युद्ध किए हथियार उठाए बिना ही मात देने की कोशिश करते हैं। इस आंदोलन में महिलाओं को भी सम्मिलित होने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन की व्यापकता एवं देशवासियों की सक्रिय भागीदारी से ब्रिटिश हुकूमत झल्ला गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ मंत्र दिया, करो या मरो, जिसका अर्थ था भारत की जनता को देश की आजादी के लिए हर अहिंसात्मक ढंग से प्रयत्न करना होगा। इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने बड़ी क्रूरता से दमन किया, जिसके फलस्वरूप गांधी ने
21

0: दिन के उपवास की घोषणा की, जिससे ब्रिटिश सरकार पर वैश्विक दबाव बढ़ने लगा था। यही नहीं, 1946 में जब देश सांप्रदायिक दंगों की लपेट में था, तो शांति की पुनर्स्थापना हेतु प्रयासरत गांधी को माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि से संबोधित किया। हालांकि भारत पाक विभाजन घटना ने गांधी जी के सिद्धांत को कमजोर साबित करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनके सिद्धांत मानवता पर आधारित है, प्रेम और करुणा पर आधारित है, जो वैश्विक दौर में और प्रासंगिक बन गई है। गांधी जी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए अहिंसा के मार्ग को ही एकमात्र साधन के रूप में देखते थे। उनका मानना था, सच्चे लोकतंत्र या स्वराज्य की प्राप्ति असत्य या हिंसात्मक साधनों द्वारा कभी नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि इन साधनों का प्रयोग करने का अर्थ होगा अपने विरोधियों को कुचलना। अतः जनता की स्वतंत्रता तो अहिंसक राज्य में ही संभव है। वर्तमान भारत को जब हम देखते हैं तो गांधी की वाणी अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है। गांधी जी की अहिंसा, सामाजिक शांति, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक समन्वय और पारिवारिक निर्माण का भी साधन है। आर्थिक क्षेत्र में अहिंसा का तात्पर्य है कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। यदि पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करते हैं तो यह आर्थिक हिंसा होगी। अतः पूंजीपतियों को चाहिए कि मजदूरों के हृदय को चोट न पहुंचाते हुए उचित मजदूरी प्रदान करें, जिससे वे भी दो वक्त की रोटी खा सके। गांधी जी कहते हैं कि इससे न केवल पूंजीपतियों एवं मजदूरों के बीच प्रेम भाव का विकास होगा, बल्कि मजदूर भी अपना काम सत्य निष्ठता पूर्वक करेंगे। गांधी जी के शब्द कोश में बदला लेने जैसा शब्द ही नहीं था, बल्कि जीवन के विभिन्न बुद्रुकताओं का हल अहिंसा ही में ही देखते हैं। वे अहिंसा को हिंसा से अधिक शक्तिशाली मानते हैं। अहिंसा का अर्थ है मन, कर्म तथा वचन से किसी भी जीवधारी को आघात या कष्ट न पहुंचाना। गांधी जी का कहना था कि अहिंसा किसी अकर्मण्यता का दर्शन नहीं है, यह तो कर्मठता और गतिशीलता का दर्शन है। गांधी जी के अनुसार जो व्यक्ति मन, कर्म, वचन का पालन करता है, उसके लिए कोई शत्रु नहीं होता, बल्कि शत्रु भी मित्र बन जाएगा। यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा है, अहिंसा बलवान और वीर का गुण है, साथ ही यह निर्भयता के बिना असंभव है। अहिंसा भीरू और कायरता लोगों का तरीका नहीं है, यह तो उन वीरों का तरीका है जो कि मृत्यु का सामना करने को तैयार रहते हैं। अहिंसा में सर्वोच्च प्रेम की भावना होती है, न कि घृणा की। इसी कारण अहिंसा में पराजय की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। घृणा सदैव मरती है, किंतु प्रेम कभी नहीं मरता। अहिंसा तो सर्वोच्च प्रेम, दया, करुणा और आत्मा का बलिदान है।
1: गांधी जी की दृष्टि में बदले की भावना। अभी आप सुन रहे थे प्रियंका सिंह की वार्ता, और इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा यहीं संपन्न होती है। इस अंक के प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। तो फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए शिखा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना वार्ता गांधी जी के दृष्टि में बदले की भावना। वार्ताकार थी प्रियंका सिंह। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रूपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रूपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रूपए और डीजल 93.14 रूपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रूपए और डीजल 95.13 रूपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रूपए और डीजल का मूल्य 95.35 रूपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। खबरों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेन देन भी मिले हैं। भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स से, और ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है। उधर केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडमम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।
2: शहर और जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब शहरों में रहते हैं और ये शहर दुनिया के 3/4 ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो और आबादी घनी हो, वहां बुरे मौसम, हवा में गंदापन और बीमारियों का

0: सबसे ज्यादा होता है। लेकिन शहर समस्या का हल भी बन सकते हैं, जैसे बेहतर सार्वजनिक परिवहन, कम गाड़ियां और अपने शहर में ही खाद्य उगाना। यह सब प्रदूषण को घटाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। सतत योजना बनाना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि यह एक आवश्यकता बन गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। आज लगभग 55% लोग पृथ्वी पर शहरों में रहते हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुरंजना में आप सुनेंगे एक ही गायिका श्रेया घोषाल को। हिंदी फिल्मों की मशहूर पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल अपने प्रशंसक और श्रोताओं के बीच अपनी मधुर गायकी की वजह से काफी लोकप्रिय हैं। लता मंगेशकर को अपना आदर्श मानने वाली श्रेया घोषाल ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, कन्नड़, गुजराती, मराठी और भोजपुरी भाषाओं में अपनी आवाज दी है। श्रेया बॉलीवुड की सबसे ऐसी सिंगर है जो हर गाने को बेहतरीन तरीके से गाई हैं, चाहे वो रोमांटिक हो या सैड सॉन्ग। तो आइए आज सुनवाते हैं श्रेया घोषाल को कार्यक्रम सुरंजना में।

देवदास, आपने सुना है इस फिल्म का गाना? गीतकार थे नुसरत बद्र और संगीत निर्देशन इस्माइल दरबार का था। अगला गाना सुनवाते हैं हमारी अधूरी कहानी फिल्म से। कुणाल वर्मा ने इस गीत को लिखा है, धुन अभि मिश्रा का है और आज के कार्यक्रम सुरंजना में आप सुन रहे हैं श्रेया घोषाल को।

गंगूबाई काठीवाड़ी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे A.M. तुराज और संगीत निर्देशन था शैल हदा का। इस गाने के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सुरंजना अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना श्रेया घोषाल के गाए गाने।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी

0: के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
5: अनजान ऐप से बचें।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग भैरव पर आधारित सितार वादन पंडित निखिल बैनर्जी से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राग भैरव पर आधारित सितार वादन पंडित निखिल बैनर्जी से। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन

0: की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकर योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को 0 शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: मेडिकल नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इसकी घोषणा की थी। इससे पहले कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग नांगानुगु को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से मात दी। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माही और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री आज ही नीदरलैंड्स के लिए रवाना होंगे और राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी रविवार को स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे और वहां के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 18 मई को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वे 19 मई को इटली जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने सहायता कर सकता है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कल पेइचिंग में वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद साझा सहयोग पर बल दिया। श्री ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के रूप में ये उनकी पहली चीन यात्रा है।
3: व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरु मध्य खुला रहना चाहिए। चीन ने पश्चिम एशिया से तेल आपूर्ति पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका से अधिक मात्रा में तेल खरीदने में भी रुचि दिखाई। ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर लगाए उच्च शुल्कों को समाप्त कर दिया था, जबकि चीन दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति को प्रतिबंधित न करने पर सहमत हुआ था। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अमेरिकी चैनल को बताया कि चीन ने 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमति जताई है, जो लगभग एक दशक में बोइंग की पहली बड़ी खरीद है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के न्याय विभाग ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दायर मुकदमे डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में काम करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कानूनी अनुशासनात्मक प्रणाली का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।
4: ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बार कार्यालय के उस अधिकार को चुनौती देता है जो अमेरिका में अधिवक्ताओं के लिए नैतिकता और कदाचार के मामलों की जांच करता है। मुकदमे में मुख्य रूप से न्याय विभाग के पूर्व अधिवक्ता जेफ्री क्लार्क का नाम शामिल है, जिन पर वर्ष 2020 में चुनाव परिणामों को पलटने के प्रयासों में शामिल होने का आरोप है। मुकदमे में ट्रंप के वफादार और वर्तमान में क्षमादान मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता एड मार्टिन का भी नाम शामिल है। न्याय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डीसी के अधिकारियों को यह तय नहीं करना चाहिए कि केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों या संवैधानिक जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन किया है या नहीं। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने ऊर्जा संकट के मद्देनजर क्यूबा की राजधानी हवाना में अपने समकक्ष और गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने खुफिया जानकारी साझा करने, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर भी चर्चा की। अमरीका ने क्यूबा को ईंधन संकट से निपटने में मदद करने के लिए 10 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता की पेशकश को नवीनीकृत किया है। क्यूबा ने कहा है कि वे सहायता पर चर्चा के लिए तैयार है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 21 लोगों की मृत्यु हो गई है और 45 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं।
5: यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं के अनुसार कल हुए इस हमले में घर, एक स्कूल, एक पशु अस्पताल और अन्य इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने 675 ड्रोन और 56 मिसाइलें दागी। यह हमला कीव को निशाना बनाकर किया गया था। यूक्रेन का दावा है कि इनमें से अधिकांश को मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें आवासीय क्षेत्रों में गिरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस हमले से पता चलता है कि रूस युद्ध समाप्त करने के बारे में गंभीर नहीं है। उधर रूस ने कहा कि ये हमले यूक्रेन की सेना को समर्थन देने वाले सैन्य और ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाकर किए गए थे। ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों सहित कई देशों ने हमलों की निंदा की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: इसराइल और लेबनान के अधिकारियों ने वाशिंगटन में तीसरे दौर की शांति वार्ता की। इसमें हिजबुल्ला को समाप्त करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने पर चर्चा हुई। वार्ता आज भी जारी है। अभी तक इसमें किसी महत्वपूर्ण प्रगति के समाचार नहीं है।
2: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसराइल अंतिम समझौते तक हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने की स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है। वहीं लेबनान इसराइल से लेबनानी क्षेत्र से हटने, हवाई हमले रोकने और सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई समाप्त करने की मांग कर रहा है। हालिया संघर्ष 2 मार्च को हिजबुल्ला द्वारा इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद शुरू हुआ। 24 अप्रैल को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था और दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत का सुझाव दिया था। बाद में 26 अप्रैल को इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर और कड़े हमले करने का आदेश दिया। तब से इसराइल की सेना ने लेबनान से बार बार रॉकेट लॉन्च होने की खबर दी है और कहा है कि उसने हिजबुल्ला के कई ठिकानों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: नेपाल ने इस पर्वतरोहण सत्र में रिकॉर्ड 492 पर्वतरोहियों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए अनुमति पत्र जारी किए हैं। यह आंकड़ा 2023 में जारी किए गए 489 अनुमति पत्रों के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुओंग गोंगो को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलू जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं, जबकि सांडा एक आधुनिक बिना हथियार वाली स्पर्धा है। इसमें मुक्का मारना, लात मारना, फेंकना, कुश्ती और बचाव की तकनीक का इस्तेमाल होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग का व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर तनाव के बावजूद सहयोग पर जोर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले में 21 लोगों की मौत, 45 घायल। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने ऊर्जा संकट के बीच क्यूबा में अधिकारियों से मुलाकात की। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार और विश्व दर्पण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।

0: तुमसे।
1: तुमसे तो अच्छा, बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: हेलो डॉक्टर,
5: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
4: हेलो डॉक्टर।
5: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
4: हेलो डॉक्टर,
6: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
7: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

एक आवश्यक सूचना। नीतीश कुमार सिंह उपायुक्त सरायकेला खरसवां समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करते हैं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। आप अपने मोबाइल से census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता ही प्राथमिकता है। जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की अब आपकी बारी है। सूचना समाप्त हुई।

आपने सुना सलामी फिल्म का ये गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। शब्दकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण।

आपने सुना फिल्म मोहब्बते का ये गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: प्रिय जिलावासियों जोहार, मैं नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिलावासियों से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी। धन्यवाद।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

सोनू निगम और सुनिधि चौहान को अभी आप सुन रहे थे फिल्म अमानत में। शंकर एहसान लॉय के संगीतबद्ध इस गाने को रचा था जावेद अख्तर ने। अब आइए सुनवाते हैं मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म से ये गीत। गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार हैं अनु मलिक, आवाज़ें के एस चित्रा और शान की हैं।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनवाते हैं अरिजीत सिंह का गाया फिल्म कलंक का ये गीत। शब्दकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं प्रीतम।

0: अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस समय नीट परीक्षा के संबंध में बयान दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: जो एग्जामिनेशन हो गई, उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको फिर एनटीए के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों, कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, तो परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
0: इससे पहले आगामी नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से आयोजित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा मध्य विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण के अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कल पेइचिंग में वार्ता की। दोनों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद साझा सहयोग पर बल दिया। श्री ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह उनकी पहली चीन यात्रा थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों सहित 21 लोग मारे गए हैं और 45 घायल हुए हैं। यूक्रेन की आपात सेवाओं के अनुसार कल हुए इस हमले में मकानों, एक स्कूल, एक पशु चिकित्सा केंद्र और अन्य नागरिक भवनों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

मित्रों, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आप तक सही और सटीक जानकारी साझा करें और साथ ही कार्यक्रम में मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखें। तो सबसे पहले आइए करते हैं आपसे थोड़ी सी बातचीत। कहते हैं जिंदगी की असली दौलत पैसा नहीं है, बल्कि वो रिश्ता होता है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ निभाता है, जहां हमारी खुशियों पर सबसे पहले मुस्कान सजती है और हमारे दुख पर सबसे पहले आंखें नम होती हैं। माँ की दुआओं से लेकर पिता के विश्वास तक और भाई बहनों बच्चों की शरारतों से लेकर प्यार तक हर रिश्ता जिंदगी को एक नई रोशनी देता है। आज के इस जदीद जमाने में, या यूं कहें तेज रफ्तार जिंदगी में, अगर कहीं सुकून मिलता है तो वो अपने परिवार के साथ मिलता है। तो आइए दोस्तों, रिश्ते की इसी गर्माहट, अपनों की इसी मिठास और भावनाओं की इसी खूबसूरत डोर के साथ सुनते हैं ये गीत।

अपने तो अपने होते हैं, अपने फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोनू निगम, जसविंदर नरोला और जयेश गांधी की आवाजों में। समीर ने इस गीत को लिखा था और हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया था।

अभी आप सुन रहे थे प्यार, अपनापन और रिश्तों की खुशबू से सजा एक बेहद खूबसूरत गीत। आज हम बात कर रहे हैं उन रिश्तों की जो बिना किसी शर्त के साथ निभाते हैं, क्योंकि अपने तो आखिर अपने होते हैं। दोस्तों, दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, मोबाइल की स्क्रीन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन एक परिवार की जगह कोई नहीं ले सकता। और इन्हीं अनमोल रिश्तों को समर्पित है आज का अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हर साल ये दिवस 15 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ताकि हम अपने परिवार की अहमियत को समझ सकें, उन रिश्तों को वक्त दें जो हमारी जिंदगी की असली पूंजी है। जरा सोचिए ना, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तो परिवार ही हमारे साथ हमारी ताकत बनकर खड़ा होता है। सच कहा जाए तो रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते हैं, रिश्ते तो बनते हैं एहसास से। और हमारा परिवार वही एहसास है जहां बिना कहे दिल की बातें समझ ली जाती हैं। लेकिन आज रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत जगह कोई महल नहीं, बल्कि वो घर है जहाँ आपका इंतजार होता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें ये भी याद दिलाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन परिवार की जड़ों को हमेशा मजबूत रहना चाहिए। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर हम एक छोटा सा वादा करें, अपने परिवार को वक्त देंगे, रिश्तों की अहमियत को समझेंगे, नाराजगी को खत्म करके गले

मिलेंगे और अपने और अपनों को कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। इसी वादे के साथ आप अपने परिवार के साथ मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को प्यार से सजाते रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम। और अब एक खूबसूरत सा गीत आइए सुनते हैं।

हम साथ साथ हैं। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे हरिहरन प्रतिमा राव और संतोष तिवारी की आवाजों में। रविंद्र रावल ने इस गीत को लिखा था और राम लक्ष्मण ने संगीतबद्ध किया था।

और अब हम बातें करेंगे भारत की आज़ादी के बारे में। साथियों, भारत की आज़ादी सिर्फ एक आंदोलन नहीं थी, ये उन लाखों क्रांतिकारियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की कहानी थी मित्रों, जिन्होंने अपने आज को मिटाकर हमारे कल को रोशन किया। और जब भी देशभक्ति और साहस की बात होगी तो एक नाम पूरे गर्व के साथ लिया जाएगा और वो नाम है सुखदेव सिंह थापर का। आज हम नमन करते हैं भारत माता के उस अमर सपूत को जिसने बहुत कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, सुखदेव सिंह थापर। ये नाम सुनते ही देशभक्ति की लौ दिलों में जल उठती है। सुखदेव सिंह थापर का जन्म पंजाब की धरती पर हुआ था। बचपन से ही उनके मन में देश प्रेम की भावना थी। अंग्रेजों की गुलामी उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने नौजवानों को एकजुट करने का काम किया और युवाओं में देशभक्ति की चेतना जगाई। और फिर आया वो दिन जब भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव सिंह थापर, ये तीनों वीरों को फांसी दे दी गई। उन्हें रात में फांसी दी गई क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि इन क्रांतिकारियों के प्रति जनता का प्यार कहीं क्रांति की आग न भड़का दे। लेकिन श्रोताओं, शरीर मिट सकता है, विचार नहीं। आज भी सुखदेव सिंह थापर का नाम हर भारतीय के दिलों में जिंदा है। आज के युवाओं को सुखदेव सिंह थापर के जीवन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सुखदेव सिंह कहा करते थे कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, अगर युवा जागरूक हो जाए तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा देशभक्त वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के बारे में सोचता है। ऐसे महान क्रांतिकारी युवा को हमारा शत शत नमन।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700

0: 0001-424-2-424.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से तह दिल से इस्तकबाल करते हैं और अब हम याद करते हैं एक ऐसी कहानी को जो आपकी भी है और हमारी भी। मई का महीना शुरू होते ही स्कूल की आखिरी घंटी बजती थी और हमारा और आपका दिल खुशी से झूम उठता था। किताबें बैग में बंद और सपने खुशी से झूमने लगते थे। सुबह देर तक सोना, शाम होते ही दोस्तों के साथ गली में खेलने निकल जाना, बस यही तो थी जिंदगी। न मोबाइल की दुनिया, न ऑनलाइन की भाग दौड़, सिर्फ चेहरे पर सच्ची मुस्कान और दिल में बेफिक्री, और फिर नानी या दादी के घर जाने का इंतजार। बस एक ही खुशी मन में रहती थी कि कब हम नानी के घर पहुंचेंगे। नानी की कहानी, दादी के हाथ के बने लजीज खाने। सच कहें दोस्तों तो उस वक्त छोटी छोटी चीजों में ही पूरी दुनिया बसती थी। वक्त कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया। बचपन कब खत्म हुआ हमें पता ही नहीं चला। गर्मी की छुट्टियां अब कैलेंडर में तो आती हैं, लेकिन वो शोर, वो हंसी, वो मस्ती कहां पीछे छूट गई। अब वो पेड़ों की छांव में खेले जाने वाले खेल, दोस्तों के साथ बिताई गई वो लंबी शामें आज मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन में सिमटती जा रही हैं। कभी ये छुट्टियां यादों का खजाना होती थी और आज ज्यादातर समय नोटिफिकेशन और ऑनलाइन दुनिया में बीत रहा है। वो गर्मी की छुट्टियां और वो बिताए पल भले ही आज पीछे छूट गए हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी दिल के किसी कोने में वैसे ही मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि बचपन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो हमारे अंदर याद बनकर हमेशा जिंदा रहता है। इन्हीं मीठी यादों और मासूम सी खुशबुओं और उस बचपन को हमेशा यादों के झरोकों में सजाए रखे और इन्हीं मीठी यादों को महसूस कराता एक बेहद प्यारा सा गीत, जिसके बोल सुनते ही आपका मन उसी बचपन की गलियों में खो जाएगा। आइए सुनते हैं वो गीत।

हिमेश रेशमिया की आवाज में अभी आपने सुना प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये गीत। इरशाद कामिल के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था और इस गाने के जरिया हमने बचपन की यादों को ताजा किया। श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर, और अब इस कार्यक्रम में बातें करेंगे हिंदी सिनेमा के उस मुस्कान की, जिनकी अदाओं ने, जिनकी हंसी ने और जिनकी शानदार अभिनय कला ने करोड़ों दिलों को अपना दीवाना बनाया। जी हाँ, आज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्मदिन है, तो सबसे पहले उनके जन्मदिन पर हम उन्हें देते हैं बधाई।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।

फिल्म तेजाब का ये गीत अभी आपने सुना, अलका याग्निक की आवाज़ थी। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया था। और इस गीत के बाद शुरू हुआ कामयाबी का वो सफर जहां एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में आती चली गईं। उनके गाने, उनकी मुस्कुराहट और उनकी अदाकारी आज भी उसी तरह याद की जाती है। 90 का वो दौर जब मोहब्बत गानों में बसती थी और हर धड़कन किसी गीत से जुड़ जाती थी। दोस्तों, 90 के दशक की फिल्मों का जिक्र हो और माधुरी दीक्षित का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 में हुआ था। उन्होंने नाटक कबूतर से अपनी अभिनय करियर की शुरुआत की। 1988 में उन्हें तेजाब फिल्म से सफलता मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें 34वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। 1990 में फिल्म दिल में अभिनय किया उन्होंने, जो उस वर्ष की सबसे हिट फिल्म थी और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला।

दिल फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। शब्द रचना थी समीर की और धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने।

दोस्तों, गर्मी का मौसम सिर्फ तपती धूप ही नहीं लाता, ये अपने साथ लाता है सेहत का इम्तहान भी। कहीं तेज धूप, कहीं लू का खतरा, तो कहीं ठंडे ठंडे पानी के चक्कर में बिगड़ती तबीयत। ऐसे मौसम में जरूरत है थोड़ा संभलने की, थोड़ा खुद का ख्याल रखने की। घर से बाहर निकलें तो पानी साथ रखें, खाली पेट धूप में जाने से बचें, और बच्चों को मोबाइल से निकालकर थोड़ी ठंडी हवा और खेल की तरफ भी ले जाएं, क्योंकि सेहत अच्छी हो तो गर्मी की छुट्टियां भी कहानी बन जाती हैं, वरना वही मौसम परेशानी बन जाता है। तो दोस्तों, इस गर्मी में मुस्कुराइए, खूब पानी पीजिए, हल्का खाना खाइए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। और सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

तोहफा फिल्म के इस गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से इस गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से अपने रेडियो सखी इशरत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, जमशेदपुर।
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
2: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया।

0: किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपये, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपये और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपये हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम भावगीत। भावगीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। यादें कभी बारिश की बूंदों जैसी होती हैं, जो चुपके से दिल को भिगो जाती हैं, और कभी किसी पुराने गीत की तरह जो हर धड़कन के साथ फिर से जी उठती हैं। आज की इस महफिल में पेश है एक ऐसा ही एहसास जिसमें मोहब्बत भी है, तन्हाई भी, और बीते लम्हे भी हैं। तो अपने दिल की धड़कनों को थोड़ा धीमा कीजिए और यादों के सफर पर चल पड़िए और सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा जिसके हर शब्द किसी अपने की कमी का एहसास दिलाते हैं और हर सुर दिल को छू जाता है।

कार्यक्रम भावगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। दोस्तों, प्यार जब दिल में चुपके से जन्म लेता है तो आंखें बातें करने लगती हैं, और जब वही प्यार इकरार बन जाए तो हर धड़कन एक नया गीत गुनगुनाने लगती है। और अब एक ऐसा एहसास जहां प्यार की मासूमियत भी है और दिल के इकरार की मिठास भी, और जिसके हर बोल में प्यार की खुशबू और हर सुर में दिल का एहसास। लीजिए सुनिए ये गीत।

दोस्तों, कभी कभी दिल बिना कुछ कहे ही उदास हो जाता है। किसी अपने की बात चुपचाप दिल को छू जाती है और फिर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक छोटी सी नाराजगी छुप जाती है। लेकिन रिश्तों की खूबसूरती यही है कि जहां नाराजगी होती है वहीं मनाने की चाहत भी होती है। पेशेक ऐसा एहसास जो खामोश नाराजगी को भी प्यार में बदल देता है।

ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत। और अब उन फिल्मों के नाम भी हम आपको बताते चलें जिन फिल्मों का गीत अभी आप सुन रहे थे। पुराना मंदिर, सिंदूर, वतन के रखवाले और बड़े दिल वाले। इसी के साथ भावगीत का ये सुरीला सफर अब खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत।

भावगीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसके तहत आइए सुनते हैं राग भटियार में पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन।

राग भटियार में अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन। इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिंत इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। 21 जून को आयोजित होगी पुनर्परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, अगले सत्र से पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी नीट यूजी परीक्षा। कोयला राज्य मंत्री ने बोकारो के जारंगडीह सीसीएल क्षेत्र में वैज्ञानिक खनन और पुनर्वास की समीक्षा की। सीएमपीडीआई और एमईसीएल के बीच हुआ महत्वपूर्ण समझौता। रांची प्रदेश कार्यालय में भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक जारी। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा। राज्य में एसआईआर के तहत 2,64,00,000 से अधिक मतदाताओं का होगा भौतिक सत्यापन। सीईओ ने कहा, मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा कोई भी योग्य नागरिक। और जमशेदपुर के क्रिकेटर कुमार कुशाग्र का इंडिया ए टीम में चयन। जून में श्रीलंका में खेलेंगे त्रिकोणीय श्रृंखला। और अब समाचार विस्तार से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। सरकार की मंजूरी के बाद अब यह परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। 3 मई को हुई प्रारंभिक परीक्षा को पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया था। परीक्षा देने वाले छात्रों को अगले महीने की 14 तारीख तक परीक्षा का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि छात्र सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके प्रति संवेदनशील है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि अगले वर्ष से नीट यूजी परीक्षा मौजूदा ओएमआर आधारित पद्धति के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति से आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी योग्य विद्यार्थी फर्जी उम्मीदवारों की धांधली या शिक्षा माफिया की साजिशों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो जाए।
1: अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से हो, एनटीए में जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है। जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी

0: जीरो फीस होगा, विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
1: केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे की उपस्थिति में रांची स्थित सीएमपीडीआई मुख्यालय में एमईसीएल के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य देश में ऊर्जा और गैर ऊर्जा खनिजों की संयुक्त खोज को बढ़ावा देना है। बैठक में मंत्री ने बंद खदानों में मत्स्य पालन और मशरूम खेती के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर विशेष जोर दिया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने बोकारो जिले के जारंगडीह सीसीएल परियोजना क्षेत्र का दौरा कर वैज्ञानिक खनन, पर्यावरण संरक्षण और पुनर्वास नीतियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने वहां कौशल विकास केंद्र के युवाओं से संवाद करते हुए आधुनिक और पारदर्शी कार्य संस्कृति अपनाने का आह्वान किया। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू कर रहे हैं। इसमें राज्य सरकार की विफलताओं, भ्रष्टाचार और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए जन समस्याओं के खिलाफ आगामी राज्यव्यापी आंदोलनों को धार देने की रणनीति बनाई जाएगी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बालमुचे ने झामुमो पर पिछले तीन चुनावों में हक मारी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संख्या बल के आधार पर झामुमो सिर्फ एक सीट का हकदार है और दूसरी सीट पर कांग्रेस का पुख्ता दावा बनता है।
2: 5 वोट लेके अब दूसरा उम्मीदवार दीजिएगा, 16 वोट लेके हम उम्मीदवार नहीं देंगे। बड़ा अजीब गरीब है, आप कैसे सोचते हैं? इसलिए हमने कहा कि ये लोग की मंशा ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपनी चलाकी के चलते बीजेपी को सीट दे दें, लेकिन बीजेपी को जिता के भेजेंगे। देखिए अब देखिएगा, हमको लगता है, मैंने कहा कि मेरा अपना पर्सनल, इसलिए अगर हम लोग को दोनों सीट निकालना है तब अंडरस्टैंडिंग करके ही लड़ना पड़ेगा।
1: राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 लागू करने के लिए विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें सभी जिलों में वैज्ञानिक तरीके से कचरा संग्रहण और प्रोसेसिंग व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। गांव स्तर पर डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए ई रिक्शा के उपयोग पर जोर दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत राज्य के 2,64,00,000 से अधिक मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इस वृहद अभियान के लिए प्रदेश भर में 29,500 से ज्यादा BLO और विभिन्न दलों द्वारा 21,600 BLA तैनात किए जाएंगे। मामले पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि इस देशव्यापी विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य 100% शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना है, ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
3: हम लोग प्रत्येक घर पर हम लोग सर्वे करते हुए, प्रत्येक व्यक्ति का जानन करते हुए हम लोग योग व्यक्ति का सबका नाम सूची आएगी, किसका योगदान नहीं है, मतलब क्लियर कट का मतलब है उनका भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 उम्र के ऊपर होना चाहिए, झारखंड में रहना चाहिए, उनका सबका नाम रोल में आएगी। इसलिए किसी का भी चिंता करने की आवश्यक नहीं है, हम लोग उसका इंश्योर करेंगे।
1: पेट्रोलियम कंपनियों ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। इस पर झामुमो ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने भाजपा पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव समाप्त होते ही कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जिससे आम जनता पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।
4: सरकार 5 राज्यों के चुनाव में लगी रही और अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो धीरे धीरे जो असलियत है वो जनता के समक्ष आ रही है और अब जो जिम्मेदारी है वो जनता पर डालने का काम अब किया जा रहा है। पहले से ऐसी परिस्थिति के साथ निपटने के लिए जो तैयारी की कमी उस पर कोई काम नहीं हुआ।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,50,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 3,02,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। रांची सहित राज्य के 14 जिलों में 17 और 18 मई को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और कहीं कहीं वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पलामू और गढ़वा को छोड़कर राज्य के लगभग सभी जिलों में आज और कल तेज हवा और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है। 20 मई तक राज्य के सभी जिलों का मौसम बदला रहेगा। क्रिकेट। जमशेदपुर के प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र का चयन भारतीय ए क्रिकेट टीम में हुआ है। वह 9 जून से श्रीलंका में आयोजित होने वाली एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला में हिस्सा लेंगे। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत के साथ मेजबान श्रीलंका और अफगानिस्तान एक ही टीमें खेलेंगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। 21 जून को आयोजित होगी पुनर्परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा अगले सत्र से पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी नीट यूजी परीक्षा। कोयला राज्य मंत्री ने बोकारो के जारंगडीह सीसीएल क्षेत्र में वैज्ञानिक खनन और पुनर्वास की समीक्षा की। सीएमपीडीआई और एमईसीएल के बीच हुआ महत्वपूर्ण समझौता। रांची प्रदेश कार्यालय में भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक जारी। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा। राज्य में एसआईआर के तहत 2,64,00,000 से अधिक मतदाताओं का होगा भौतिक सत्यापन। सीईओ ने कहा मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा कोई भी योग्य नागरिक। और जमशेदपुर के क्रिकेटर कुमार कुशाग्र का इंडिया ए टीम में चयन। जून में श्रीलंका में खेलेंगे त्रिकोणीय श्रृंखला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। कार्यक्रम फिल्म संगीत का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
7: ज्ञान विज्ञान
8: इतिहास के पन्नों से,
9: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
10: मौसम का मिजाज,
7: अपने शहर की खबरें,
9: बातों मुलाकातों के साथ
10: सुरीला मनोरंजन
7: और भी बहुत कुछ।
10: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
9: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
6: नमस्कार जमशेदपुर।
11: हेलो डॉक्टर,
6: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
11: हेलो डॉक्टर,
6: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
11: हेलो डॉक्टर।

आइए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम सुनने वालों को इशरत का आदाब नमस्कार। कार्यक्रम के आगाज में आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सनगमा।

आशिकी फिल्म का ये गीत भी आपने सुना। मदनपाल ने इस गीत को लिखा था, कुमार सानू की आवाज़ थी और नदीम शर्मा ने संगीतबद्ध किया था। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: ब्रेक खत्म हुआ और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे आदमी फिल्म का ये गीत, संगीत जतिन ललित का था।

0: फिल्म जानवर का ये गीत भी आपने सुना, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे संतराल के बाद।
1: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव, यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है?
2: बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कार्यक्रम फिल्म संगीत में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे, उससे पहले एक आवश्यक सूचना। नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करते हैं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप 100 गणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से se.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। ये पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक 100 गणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता ही प्राथमिकता है। जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आप खुद निभाएं। सूचना समाप्त हुई।

प्रिय जिला वासियों, जो मैं नीतीश कुमार सिंह उपायुक्त सरायकेला खरसावां समस्त जिले वासियों से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी।

आई मिलन की रात इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। इस गीत को लिखा था मजरूह ने, धुन बनाई थी आनंद मिलिंद्र ने। कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म का ये गीत। शब्द रचना थी मजरूह की और धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का

फिल्म हिम्मत वाले के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये सफ़र अब ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2 बजने ही वाले हैं, अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब सिवा थोड़ी देर बाद।

0: 13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vithitsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rothindra Bosho elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की दोनों नेताओं के बीच रक्षा पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की
2: ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्रता का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय है राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है होर्मुज को फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान

0: खान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूए के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
1: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
5: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
6: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक

0: वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: कार्यक्रम के आगाज से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे हमारे बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रूपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: फिल्म संगीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे माधुरी दीक्षित पर फिल्म आया चंदनामा। कार्यक्रम का आगाज इस नगमे से करते हैं।

अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आपने सुना खलनायक फिल्म का ये गीत। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे।

ब्रेक खत्म हुआ और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का ये गीत। अनुराधा पौडवाल की आवाज है, समीर ने इस गीत को लिखा है और नदीम शर्मा ने संगीतबद्ध किया है।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अभी आपने सुना समीर का लिखा, नदीम श्रवण का संगीत, बद किया साजन फिल्म का ये गीत। और अब लीजिए सुनिए फिल्म अंजाम का ये नगमा। पूर्णिमा की आवाज़ है, समीर के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए हम आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और सपना अवस्थी की आवाजों में हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का ये गीत।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2025-2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी योग्य विद्यार्थी फर्जी उम्मीदवारों की धांधली या शिक्षा माफिया की साजिशों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो जाए।
1: CBI तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहाँ वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है CBI के ऊपर। सरकार की पूरा नेतृत्व सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों में जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को फिलहाल जमानत नहीं मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख निर्धारित की है। विनय चौबे पिछले लगभग एक वर्ष से न्यायिक हिरासत में है और उन्होंने जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। दुमका जिले में सखी मंडल की दीदियां आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। जिले के रानीश्वर प्रखंड में आज 4 महिलाओं को JSLPS की सामुदायिक निवेश निधि ऋण योजना के तहत बैटरी चलित रिक्शा उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पंचायत स्तर तक आजीविका गतिविधियों का विस्तार करने के उद्देश्य से इस तरह के ऋण आधारित योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बिजली, पानी, भ्रष्टाचार और धान खरीद जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। राष्ट्रीय डेंगू

0: के अवसर पर आज स्वास्थ्य विभाग ने हजारीबाग जिले वासियों से डेंगू जैसे मच्छर जनित बीमारी की रोकथाम के लिए सतर्क रहने और साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि वर्षा ऋतु के दौरान डेंगू का प्रभाव बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए समय रहते आवश्यक सावधानियां अपनाना जरूरी है। हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में आज इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि मरीज की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की।
1: लापरवाही से जान जा रहा, अभी एक देख रहे होंगे बच्ची जो बोल रही है उनके पिताजी को इन लोग मार दिया, ऑक्सीजन के अभाव में कैसे चलेगा अस्पताल और क्या होगा। महोदय से बातचीत, नए नए आए हैं और उनको देख के लगता है कि कोई सख्त कार्रवाई करेंगे, हम भी बोले सख्त कार्रवाई करें और ये सरकार को चाहिए कि किनके नजर में हो रहा है।
0: रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में आज जूनियर डॉक्टरों ने वेतन भुगतान में देरी के विरोध में प्रदर्शन किया। पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज डॉक्टरों ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के चैंबर का घेराव किया और नो पे नो वर्क के नारे लगाए। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से वेतन आवंटन नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान झारखंड के कई जिलों में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम में बारिश के साथ साथ गरज चमक और तेज हवा की प्रबल संभावना जताई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश।
0: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
0: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
0: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
0: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
0: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
0: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए।

0: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
1: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ? कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
0: जी, और हाँ, श्रोताओं आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
1: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
0: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
1: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
0: जैसे
1: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
0: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
1: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
0: जैसे
1: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
0: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
1: तो श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए प्रश्न।
0: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है। और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
3: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
2: थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ

0: जाती हूँ और फिर थाथुन अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
4: हाँ
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे।

0: चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जुगिंदर सिंह वन सिख रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
0: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सूबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सूबेदार साहब।
2: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: हैं साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए सूबेदार

0: जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्ष दर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहाँ हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह। आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
5: वंस अपॉन अ टाइम, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, देयर वाज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। ऑल्दो ही वाजंट वेरी बिग, ही वाज स्ट्रॉन्ग एंड he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
6: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good, because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher, because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited.
5: On that day, the sun shone bright, and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands, they raced hand in hand. But nobody took Hari's hand. Nobody went near him.
6: Hari was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him.
7: Good morning. I am so pleased to meet a boy like you.
6: Hari turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? Hari saw a monster crab walking sideways out of the pool. His eyes were on the ends of short stalks, and he looked most queer. He held out his front claw to Hari. Hari put out his hand to shake the crab's claw. But to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled.
7: "Ah, here is my good cousin,"
6: said the crab pleasantly. And to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. Then he stared at the pool in surprise. For out come sandy-colored shrimps and prawns, more crabs, and another large lobster. And they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching.
7: "Don't you like it?" said all the creatures in surprise. "Why? We were told you would love to see us because you were a champion pincher and picker yourself. Come, come, join in the fun."
6: Hari leapt to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Hari saw that they had forgotten him for a time. So he turned and ran for his life. tears streaming down his cheeks.
8: They only did to me what I keep doing to the other children.
6: He thought.
8: But how it hurt, and how I hated those crabs and lobsters. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch or prick any.
4: तो श्रोताओं, अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर होता है समाप्त। तो अब अपने मित्र अजीत को
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। इसके तहत आइए सुनते हैं उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी पर बजाया धुन।

उस्ताद अमजद अली खां का सरोद पर बजाया धुन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम अब से बस थोड़ी देर बाद।

झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नीलू का जोहार। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे खरिया लोकगीत। कलाकार हैं बुद्ध राम खरिया और साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे बुधराम खरिया और साथियों की आवाज़ में खरिया लोकगीत। इसके साथ ही झारखंड के लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। जोहार।
1: झारखंड के लोकगीत कार्यक्रमों की आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब सुबह

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आज रांची में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश मिश्र ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी SIR की प्रक्रिया होनी है। राज्य के बहुचर्चित ग्रामीण विकास विभाग टेंडर घोटाला मामले में आरोपित अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने आज रांची स्थित PMLA की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए पासपोर्ट जमा करने और न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। इस मामले में ED पहले ही प्रमोद कुमार समेत 14 आरोपितों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और अब तक झारखंड, बिहार तथा दिल्ली में 52 ठिकानों पर छापेमारी कर करीब 44 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। रांची में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। रांची जिला बल के 7 पुलिस अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेवारियां सौंपी गई है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और अब पेश है बज़्म-ए-क़व्वाली। फनकार हैं अताउल्ला खान।

0: अताउल्लाह खान की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे ये कव्वाली। इसी के साथ कव्वाली का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है।
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मीरा शर्मा। सबसे पहले स्वीकार करें हमारा नमस्कार और चलिए सुनते हैं प्यारे प्यारे गीत।
2: God.

మగసని ధని సగమా.

फिल्म भूल भुलैया का ये प्यारा सा गीत आपने सुना, श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार की आवाजें थी, समीर के बोल थे और संगीत था प्रीतम का।

दयावान फिल्म का ये गीत आपने सुना, पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें थी, अजीज कैसी के बोल और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आपने सुना गर्लफ्रेंड फिल्म का ये गीत। बोल थे प्रवीण भारद्वाज के और संगीत डब्बू मलिक ने बनाई थी।

पहली फिल्म का ये गीत आपने सुना। आवाज़ें थी श्रेया घोषाल, मधुश्री, बेला शिंदे और कल्पिनी कोमकली की। साथ दिया था सोनू निगम ने। पारंपरिक धुन गीत पर धुन रचना की थी MM क्रीम ने।

सुनिधि चौहान की आवाज में आपने सुना फिल्म पॉपकॉर्न खाओ मस्त हो जाओ, इस फिल्म का ये गीत। गीत के बोल विशाल दादलानी ने लिखे थे और संगीत था विशाल शेखर का। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने वाले हैं कुछ ही पल में।

0: के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड ट्रेजरी महाघोटाले को राज्य में संगठित भ्रष्टाचार और सरकारी धन की सुनियोजित लूट का गंभीर मामला बताया है। उन्होंने दावा किया कि अब तक करीब 14 जिलों में ट्रेजरी से लगभग 130 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले सामने आए हैं, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता की आशंका है। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। सरायकेला खरसावां जिले में टाटा कांडरा मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने आज गम्हरिया क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया। उपायुक्त के निर्देश पर सर्विस रोड किनारे वर्षों से किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासनिक टीम पहुंचते ही कई दुकानदारों और कारोबारियों ने स्वयं अपने अस्थायी निर्माण हटाने शुरू कर दिए, जबकि कई स्थानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध ढांचों को तोड़ा गया। खूंटी के बिरसा कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दो दिवसीय प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हो गया। समारोह के दूसरे दिन 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब 1400 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। सरायकेला स्थित जिला व्यवहार न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी परेश उरांव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं हमारे युवा श्रोताओं को संबोधित उनका दैनिक कार्यक्रम

नमस्कार, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं FM 102.4 MHz पर युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। और आज के इस सफर को और भी शानदार बनाने के लिए मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त मानव घोष। दोस्तों, हम युवाओं की रगों में खून कम और रफ्तार का जुनून ज्यादा दौड़ता है ना? जब आप अपनी बाइक या स्कूटी को पूरी रफ्तार से चलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम हवा से बातें कर रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस हवा से बातों की करने के बीच खतरे की सरसराहट सुनी है? जरा कल्पना कीजिए, एक घर में रात के 11 बजे फोन बजता है। माँ सोचती है मेरा बेटा शायद पहुंच गया होगा, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है, एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, सड़क दुर्घटना, जी हाँ, ये सिर्फ एक खबर नहीं होती, वो किसी का अधूरा सपना, किसी माँ की टूटी उम्मीद और किसी परिवार की जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ बन जाता है। दोस्तों, और सबसे चौंकाने वाली बात, इन हादसों में सबसे बड़ी संख्या हमारे युवाओं की होती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब एक ईमानदारी से आप एक बात कबूल कीजिए, हम दोस्तों के बीच दिखावे के लिए अक्सर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, है ना? लाल बत्ती का उल्लंघन करना हमें किसी उपलब्धि से कम नहीं लगता, पर जरा सोचिए, क्या हमारी जिंदगी इतनी सस्ती है कि उसे कुछ सेकेंड के रोमांच के लिए दांव पर लगा दिया जाए? बस पास सी तो जाना है, हेलमेट क्यों पहनूं? अरे कुछ नहीं होगा भाई, और यही कुछ नहीं होगा जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा बन जाता है।

क्योंकि जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी की जिम्मेदारी भी आप पर होती है। आपकी छोटी सी लापरवाही किसी मासूम की जान ले सकती है। अब आप मुझसे कहेंगे कि क्या हम बाइक चलाना छोड़ दें या फिर क्या करें? दोस्तों, आपको बस अपनी सोच को बदलना है। सीट बेल्ट बांधना, हेलमेट पहनना, रफ्तार सीमा में वाहन चलाना, ये कोई पाबंदी नहीं, ये आपकी अपनी जिंदगी का सुरक्षा कवच है मेरे दोस्तों। दोस्तों याद रखिए, रियल हीरो वो नहीं जो बाइक पर हाथ छोड़कर कलाबाजियां करे, रियल हीरो तो वो है जो हेलमेट पहनकर अपने परिवार और घर को भी सुरक्षित रखे। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर युवा चाह ले तो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सकती है, क्योंकि बदलाव कानून से नहीं, बदलाव युवाओं की सोच से आता है। स्मार्ट बनिए, सुरक्षित रहिए, वाहन चलाइए, रफ्तार की सीमा में चलाइए, क्योंकि आपके घर पहुंचने पर आपका कोई अपना इंतजार कर रहा होता है। और चलिए, मैं और आप मिलकर एक वादा करते हैं, अगली बार जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो दिमाग में सिर्फ रफ्तार नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी होगी, हमारे परिवार की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हम हैं तो हमारा परिवार है। और जिंदगी केवल एक रेस ट्रैक नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर है, और इस खूबसूरत सफर को सुहाना बनाने के लिए आइए सुनते हैं एक शानदार गीत, सफरनामा।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म तमाशा का ये गीत सफरनामा, जिसे गाया है लकी अली ने। गीतकार है इरशाद कामिल और इसे संगीतबद्ध किया है एआर रहमान ने। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा मेरे युवा साथियों को कि अगर युवा चाह ले तो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या आधी हो सकती है, क्योंकि जब एक युवा हेलमेट पहनता है तो वो सिर्फ नियम नहीं बनाता, वो अपने परिवार से किया हुआ वादा निभाता है कि मैं सुरक्षित रहूँगा। तो आइए आज युवा, हम सब युवा मिलकर सिर्फ चर्चा ना करें, एक संकल्प ले कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, ड्राइविंग रूल के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हेलमेट और सीट बेल्ट को अपनी आदत बनाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। और इसी पहल पर सुनते हैं जमशेदपुर के एक युवा का विचार कि उसने सड़क सुरक्षा पर क्या कहा है।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामलिंगम राजू है, मैं 25 वर्ष का युवा हूँ। सड़क सुरक्षा में जिम्मेदारी और लापरवाही की बात करूँ तो हमारी उम्र ऐसी होती है जहाँ हमें लगता है कि हम अजय, मतलब इनविंसिबल, हमें रफ्तार में रोमांच दिखता है, नियमों में पाबंदी दिखता है। लेकिन हकीकत यह है कि सड़क पर हमारी एक छोटी सी लापरवाही सिर्फ हमारी ज़िंदगी नहीं बल्कि हमारे पीछे पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। हमें समझना होगा कि जिम्मेदारी विकल्प नहीं, कर्तव्य है। और सड़क सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ हेलमेट पहने या सीट बेल्ट लगाएं। तो ये जो बेसिक बातें हुई, ये हमारी एक मानसिकता होनी चाहिए कि खुद की सुरक्षा के, जब हम हेलमेट पहनते हैं तो हम पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए भी पहनते हैं, और उससे दूसरों की भी सुरक्षा होती है। सड़क पर हम अकेले नहीं हैं, हमारी एक गलत ओवरटेकिंग किसी और के घर का चिराग बुझा सकती है। और होता क्या है कि युवा बहुत रोमांच और मौत के बीच का इस बारीक धागा को समझते नहीं है और इसमें बहुत लापरवाही अपनाती है, और लापरवाही के कारण बहुत सारी घटना होती है और तमाम घटनाएं होती है। एक तो जैसे स्पीड का नशा, कि बहुत तेज़ गति से गाड़ी चला रहे हैं, 120 पर चला रहे हैं और मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, नोटिफिकेशन चेक करने के चक्कर में अपना ज़िंदगी दाव पर डाल रहे हैं, नशे में ड्राइविंग करते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव, जो बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है आजकल के इस एज ग्रुप में। तो मैं यही अपील करूंगा कि आप बहुत समझदारी से अपनी सड़क सुरक्षा अपनाएं। ये बात सिर्फ ड्राइवर्स के लिए, आप पेडेस्ट्रियंस के लिए जो सड़क पे आप चल रहे हैं तो भी आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, चाहे आप टू व्हीलर चलाएं, फोर व्हीलर चलाएं, आप जहां भी रहें आपको बिल्कुल उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। नियमों का पालन मजबूरी में नहीं और मर्जी से करें, स्टंट्स और रील बनाने के चक्कर में अपनी कीमती जान को दांव पर न लगाएं। तो बात यह है कि सड़क सुरक्षा सरकारी अभियान, सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है लेकिन हमें अपने जीवन शैली में इसे अपनाना होगा। और याद रखिए, आपके घर पर आपके परिवार वाले लोग इंतजार कर रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ही सावधान रहें और सुरक्षित रहें।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: दोस्तों, आप सुन रहे थे रामलिंगम के विचारों को और अब बढ़ते हैं सफर से साहित्य की ओर। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं साहित्य वो आईना है जो किसी भी समाज की सबसे सच्ची तस्वीर दिखाता है। आज हम जो स्पष्ट और मानक हिंदी पढ़ते हैं, चाहे वो हमारी किताबों में हो या अखबारों में, क्या आपने कभी सोचा है कि इसे व्यवस्थित रूप किसने किया? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के उस युग निर्माता की जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा व दशा प्रदान की, जिनके सम्मान में साहित्य के एक पूरे कालखंड का नाम ही मेरे दोस्तों द्विवेदी युग कर दिया गया। जी हाँ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनका जन्म आज के दिन यानी 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। आर्थिक तंगी के कारण

0: उनकी शुरुआती शिक्षा बहुत संघर्षपूर्ण रही, किंतु उन्होंने स्व अध्याय के बल पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, गुजराती तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कुछ समय तक रेलवे में नौकरी भी की, लेकिन उनका मन हमेशा किताबों और साहित्य में ही रमता था। अतः उन्होंने अपनी मातृभाषा की सेवा के लिए नौकरी तक छोड़ दी। जब वहां से त्यागपत्र देकर 1903 में उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला, तो उन्होंने हिंदी साहित्य की धारा ही बदल दी। अपनी अद्भुत प्रतिभा, साहित्यिक सूझबूझ, परिश्रमशीलता एवं व्यवहारिक कुशलता से उन्होंने इस पत्रिका को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बना दिया। आइए सुनते हैं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के हिंदी विभाग के शोधार्थी भुवनेश कुमार प्रधान ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर क्या कहा है।
1: सन 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभालने के बाद उन्होंने हिंदी साहित्य में भाषा परिष्कार, वैचारिक गंभीरता और सामाजिक उत्तरदायित्व का नया मानदंड स्थापित किया। उनके हाथों में सरस्वती केवल पत्रिका नहीं रही, बल्कि वह हिंदी नवजागरण की वैचारिक पाठशाला बन गई। उन्होंने साहित्य को मनोरंजन की वस्तु नहीं, बल्कि समाज निर्माण की सृजनात्मक शक्ति के रूप में देखा। आचार्य द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण कथन है, कविता करने ही से कवि पदवी नहीं मिलती। इस एक वाक्य में उनका समूचा साहित्य दर्शन निहित है, क्योंकि वे साहित्य में साधना, शिल्प, विचार और उत्तरदायित्व, इन सब की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं। उनकी रचनाएं विविध विधाओं में फैली हुई है। निबंध, आलोचना, भाषा विचार, अनुवाद और साहित्यिक समीक्षा, सब पर उनका समान अधिकार था। नैषध चरित्र चर्चा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, नाट्य शास्त्र और कालिदास की निरंकुशता जैसी कृतियां उनकी बहुआयामी प्रतिभा का परिचय देती है। खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत, सुगठित और साहित्य उपयोगी रूप देने में उनका योगदान अत्यंत निर्णायक माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल साहित्यकार नहीं थे, वे संस्कार निर्माता, भाषा शोधक और युग प्रवर्तक, चिंतक थे। 21 दिसंबर 1938 को उनका देहावसान हुआ, किंतु हिंदी की आत्मा में उनका प्रकाश आज भी जीवित है।

जी हाँ, आप सुन रहे थे भुवनेश कुमार प्रधान को, और हिंदी साहित्य के विकास में इसी अतुलनीय योगदान के लिए सन 1931 में काशी नागरी प्रचारिकी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि से विभूषित किया तथा हिंदी साहित्य के सम्मेलन प्रयाग ने उन्हें वाचस्पति की उपाधि दी। आइए उनकी जयंती पर हम सब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को शत शत नमन करें। उनके निस्वार्थ योगदान के लिए यह देश और हिंदी साहित्य जगत हमेशा उनका ऋणी रहेगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: दोस्तों, अब साहित्य के सफर से निकलकर जिंदगी की अहम सच्चाई की तरफ मुड़ते हैं। दोस्तों, जिंदगी के इस भाग दौड़ में अपने करियर और सपनों का पीछा करते हुए हम अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। आज 15 मई यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, तो मुझे लगा क्यों ना आज उस नींव पर बात की जाए जिस पर हमारी जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी है। जी हाँ, हमारा परिवार। दोस्तों, हम युवा हैं, हमारी रगों में जोश है, आसमान छू लेने तक की जिद है। हम आजादी चाहते हैं, अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन एक पेड़ को भी बढ़ने के लिए तो खुली हवा चाहिए, ये बात तो सच है। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि एक पेड़ की असली ताकत उसकी शाखाओं में नहीं बल्कि उसकी जड़ों में होती है, और हमारी वो जड़ हमारा परिवार है। जरा सोचिए, जब हम बाहर की दुनिया से लड़कर थके हारे घर लौटते हैं तो हमारे मम्मी के चेहरे की फिक्र और उनका वो पूछना कि बेटा आज का दिन कैसा रहा, एक पल में हमारी सारी थकान मिटा देता है। या पापा का वो खामोश प्यार जो शायद शब्दों में कभी बयां नहीं होता, या दादा दादी की रोमांचक कहानियां, ये सभी मिलकर हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। दुनिया आपकी सफलता पर ताली बजा सकती है, लेकिन जब आप हारते हैं या निराश होते हैं तो जो हाथ सबसे पहले आपको थामता है मेरे दोस्तों, वो परिवार ही होता है। सच ही तो है ना दोस्तों, दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं। आइए इसी खूबसूरत से एहसास को महसूस करते हैं इस बेहद प्यारे से गीत के साथ, अपने तो अपने होते हैं।

आप सुन रहे थे फिल्म अपने का ये गीत, जिसे आवाज दी है सोनू निगम, जयेश गांधी और जसविंदर नरूला ने। गीतकार है समीर और इसे संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने। दोस्तों, तो चलिए आज इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक छोटा सा काम करते हैं। आज आप अपने घर जाएं, थोड़ी देर अपना फोन किनारे रख, मम्मी पापा भाई बहन या दादा दादी के पास बैठे, उनसे अपने दिन के बारे में पूछे, उनके दिन के बारे में जाने। आप समझ जाइए कि आपके परिवार ही आपकी जिंदगी है। परिवार है तो हम हैं, उनकी कदर कीजिए। दोस्तों, घर परिवार की इस प्यारी सी दुनिया के बाद अब चलते हैं बाहर की दुनिया में और जान लेते हैं आज की ताजा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से लेकर 20 मई तक 5 देशों यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा और सतत विकास मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। आज लखनऊ में चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। 15 और 16 मई को झारखंड के कई जिलों में तेज हवा, बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। धन्यवाद, सुनते रहिए आकाशवाणी।

युवा दोस्तों को संबोधित उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंशु और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर का जोरदार कार्यक्रम कल कारखाने एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों आज 15 मई है और आज पूरी दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। सही बात है दोस्तों, जब दुनिया पीठ फेर लेती है ना, तब सिर्फ एक ही जगह होती है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के गले लगाया जाता है, और वो होता है हमारा परिवार। तो आज का हमारा ये शो डेडिकेटेड है आपके, मेरे और हम सबके उस प्यारे कुनबे के नाम जो हमारी ताकत भी है और हमारी कमजोरी भी। आज की भाग दौड़ वाली लाइफ में हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि एक ही छत के नीचे रहकर भी व्हाट्सएप पर बातें करते हैं, डाइनिंग टेबल पर खाना खाते वक्त हाथ में चम्मच कम और स्मार्टफोन ज़्यादा होता है। लेकिन याद कीजिए बचपन के वो दिन जब लाइट कट जाती थी तो पूरा परिवार छत पर या आंगन में चटाई बिछाकर बैठ जाता था। वो अंताक्षरी के दौर, वो दादी नानी की कहानियाँ, और हाँ पापा का वो कड़क लुक जिससे सब शांत हो जाते थे। आज वो ज्वाइंट फैमिली धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार में बदल रही है, पर दिल के रिश्ते तो आज भी वही हैं।

दोस्तों, इस साल 2026 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की थीम परिवार, असमानताएं और बच्चों का कल्याण रखा है, जो हमें याद दिलाती है कि हर बच्चे को एक सुरक्षित और खूबसूरत परिवार मिलना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, आइए आपके खूबसूरत परिवार के लिए आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाने के लिए प्ले कर रहे हैं बॉलीवुड का ये एवरग्रीन और बेहद खूबसूरत गाना।

हरी हरण की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था हम साथ साथ हैं। गीत लिखा था रविंद्र रावल ने और संगीत राम लक्ष्मण का था।

इस गीत के बाद श्रोताओं आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं वार्ता। विषय है परिवार, सहारा, सुरक्षा और संस्कार का स्रोत। आलेख है कुमारी ज्योत्सना का। परिवार, सहारा, सुरक्षा और संस्कार का स्रोत। परिवार मानव जीवन की सबसे मूलभूत सामाजिक इकाई है। यह केवल खून के रिश्तों से बना समूह नहीं होता, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव, आपसी सहयोग और संस्कारों की पाठशाला होता है। परिवार हमें जीवन की कठिनाइयों में सहारा देता है, सुरक्षा का एहसास कराता है और अच्छे बुरे का ज्ञान देकर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। परिवार एक सहारा है। मानव एक सामाजिक प्राणी है जिसे भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। जब हम जीवन में किसी कठिनाई से जूझते हैं, तब परिवार ही वह स्थान होता है जहां हमें बिना किसी स्वार्थ के सहानुभूति, सहयोग और सलाह मिलती है। माता पिता, भाई बहन और अन्य परिजन हमारे सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। परिवार एक सुरक्षा कवच है। परिवार बच्चों के लिए सबसे पहली और सबसे सुरक्षित जगह होती है। यहाँ उन्हें न केवल शारीरिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा भी। बच्चे परिवार के संरक्षण में रहते हुए आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ते हैं। बुजुर्गों के लिए भी परिवार एक सम्मानजनक और सुरक्षित स्थान होता है। परिवार से मिलते हैं संस्कार। संस्कार किसी भी व्यक्ति के चरित्र निर्माण की नींव होते हैं। परिवार ही वह स्थान है जहां बच्चे सबसे पहले बोलना, व्यवहार करना, आदर करना और नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। माता पिता और दादा दादी के जीवन से प्रेरणा लेकर बच्चे अपने जीवन को दिशा देते हैं। परिवार में परंपराएं, रीति रिवाज और सामाजिक जिम्मेदारियों का ज्ञान भी स्वतः प्राप्त होता है। आधुनिक जीवन में परिवार का महत्व कतई कम नहीं हुआ है। भले ही आज के समय में एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है और लोग व्यस्त जीवन जी रहे हैं, फिर भी परिवार का महत्व कम नहीं हुआ है। तकनीक और समय की कमी के बावजूद जब भी व्यक्ति अकेला या असहाय महसूस करता है, तो उसे अपने परिवार की याद सबसे पहले आती है। यह इस बात का प्रमाण है कि परिवार भावनात्मक मजबूती का मुख्य आधार है। परिवार केवल एक सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि जीवन का मजबूत स्तंभ है। यह हमारे जीवन में सहारा, सुरक्षा और संस्कार प्रदान कर हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। हमें अपने परिवार की अहमियत समझते हुए इसे मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ियां भी इसी प्यार, विश्वास और मूल्यों से परिपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ सके। संयुक्त परिवार बनाम एकल परिवार, क्या खोया क्या पाया। भारत जैसे पारंपरिक समाज में संयुक्त परिवार का महत्व सदियों से रहा है। परिवारों के बड़े समूहों में बड़ों और बच्चों का मिला जुला जीवन बहुत आम था, लेकिन आधुनिकता के साथ एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। संयुक्त परिवारों के मुकाबले एकल परिवारों ने कई सामाजिक बदलावों का सामना किया है। आइए बात करते हैं संयुक्त परिवार के विषय में। संयुक्त परिवार वह पारिवारिक ढांचा होता है जिसमें कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती हैं। इसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन और उनके बच्चे मिलकर एक परिवार का हिस्सा होते हैं। संयुक्त परिवार के कुछ प्रमुख लाभ हैं जो इस प्रकार से हैं। सामान्य समर्थन और देखभाल। यहाँ सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसमें बच्चों को माता पिता और दादा दादी का बराबरी से प्यार और देखभाल मिलता है। संस्कार और परंपरा। बच्चों को संयुक्त परिवार में अपने बड़ों से संस्कार और पारिवारिक परंपराएं सीखने को मिलती है। सामूहिक जिम्मेदारी। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ अपनी जिम्मेदारियां साझा करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत तनाव कम होता है। आर्थिक सहयोग। आर्थिक रूप से भी संयुक्त परिवारों में सहयोग होता है, जिससे घर की जरूरतों का संतुलन बेहतर ढंग से बनता है। आइए अब बात करते हैं एकल परिवार के विषय में। एकल परिवार वह होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, यानी परिवार की सिर्फ एक पीढ़ी साथ रहती है। वह पारिवारिक ढांचा आधुनिक जीवन शैली में काफी आम हो गया है, खासकर शहरों में। एकल परिवारों के लाभ। स्वतंत्रता और प्राइवेसी। एकल परिवार में प्रत्येक सदस्य को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राइवेसी मिलती है, जो कि संयुक्त परिवार में अक्सर मुश्किल हो सकता है। संतुलित जीवन।
एकल परिवार में माता पिता अपने बच्चों को अधिक ध्यान और प्यार दे पाते हैं और अपने निजी जीवन को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण, एकल परिवारों में बच्चों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है जिससे वे अपनी राय और विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। संयुक्त परिवार और एकल परिवार के नुकसान, संयुक्त परिवार के नुकसान, परिवार में सभी सदस्य एक साथ रहते हैं जिससे कभी कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राइवेसी की कमी हो सकती है। कुछ मामलों में परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े और मतभेद भी हो सकते हैं। एकल परिवार के नुकसान, एकल परिवार में बच्चों को कभी कभी भावनात्मक समर्थन की कमी महसूस हो सकती है क्योंकि वे बड़ों के साथ कम समय बिताते हैं। एकल परिवार में बड़े बच्चों को जिम्मेदारी का अधिक बोझ उठाना पड़ सकता है जिससे मानसिक दबाव बढ़ सकता है। संयुक्त परिवार और एकल परिवार दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। जहां संयुक्त परिवार एक साझा जीवन शैली की ओर इशारा करता है, वहीं एकल परिवार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाता है। दोनों ही परिवारों में खुशहाली और प्यार की आवश्यकता होती है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं। यदि परिवार में प्यार, समझ और सहयोग हो तो कोई पारिवारिक ढांचा सफल हो सकता है। आधुनिक युग में परिवार का बदलता स्वरूप, परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह न केवल भावनात्मक सहारा देता है बल्कि व्यक्ति के चरित्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। परंतु जैसे जैसे समय बदला है, जीवन शैली, सोच और प्राथमिकताओं में भी बड़ा परिवर्तन आया है। इसका सीधा असर पारिवारिक ढांचे पर पड़ा है। आधुनिक युग में पारंपरिक संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है और पारिवारिक संबंधों का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। परंपरागत परिवार का स्वरूप, पहले के समय में संयुक्त परिवार आम हुआ करते थे। एक ही घर में कई पीढ़ियां साथ रहती थीं। दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे सब मिलकर एक बड़ा परिवार बनाते थे। इस ढांचे में बड़ों का मार्गदर्शन, अनुशासन और अनुभव बच्चों को सही दिशा देता था। हर सदस्य की भूमिका निर्धारित होती थी और सामूहिक जिम्मेदारी का भाव प्रबल होता था। आधुनिक युग में परिवार का बदलता ढांचा, आज की व्यस्त और प्रतिस्पर्धी जीवन शैली ने परिवारों को छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया है। एकल परिवारों की संख्या बढ़ गई है जहाँ केवल माता पिता और बच्चे ही रहते हैं। नौकरी की मजबूरियां, शहरों की ओर पलायन, स्वतंत्रता की चाह और व्यक्तिगत सोच के कारण संयुक्त परिवार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। बदलाव के कारण, आर्थिक स्वतंत्रता, अब महिलाएं भी कार्यरत हैं और दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं जिससे वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। शहरीकरण, शहरों में सीमित स्थान और सुविधाओं की कमी के कारण छोटे परिवार ही व्यवहारिक हो गए हैं। तकनीकी विकास, संचार और डिजिटल तकनीक ने परिवार के भीतर संवाद को भी बदल दिया है। व्यक्तिवादी सोच, आज का युवा अधिक स्वतंत्रता चाहता है और निजी जीवन में हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। परिवार का यह बदलता स्वरूप कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव ला रहा है। सकारात्मक पक्ष, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है। पति पत्नी के बीच अधिक समझ और समानता का वातावरण बन रहा है। नकारात्मक पक्ष, बच्चों और बुजुर्गों के बीच दूरी बढ़ गई है। अकेलापन, अवसाद और तनाव की समस्याएं बढ़ रही हैं। सामाजिक मूल्यों और पारंपरिक संस्कारों का क्षरण हो रहा है। परिवार का स्वरूप समय के साथ बदलना स्वाभाविक है, लेकिन इसके मूल तत्व, प्रेम, सहयोग, समझदारी और संस्कार हमेशा बने रहना चाहिए। आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुसार हम परिवार की संरचना में बदलाव ला सकते हैं, परंतु हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भावनात्मक जुड़ाव और मानवीय मूल्य कभी न खोए। तभी परिवार अपने वास्तविक अर्थ में संस्कारों की पाठशाला और सहारे का स्रोत बना रहेगा। परिवार सहारा, सुरक्षा और संस्कार का स्रोत, इस विषय पर हमारे श्रोता वार्ता सुन रहे थे। आलेख था कुमारी ज्योत्सना का।

श्रोताओं, डिजिटल इंडिया आज वाकई में नए भारत की पहचान बन चुका है, जिसने देश के शासन, अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस मिशन ने भारत को एक आत्मनिर्भर और तकनीक संचालित वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित किया है। नए भारत की इस डिजिटल यात्रा के सबसे प्रमुख पहलू पे बात करें तो कैश से क्यूआर कोड तक भारत ने डिजिटल भुगतान में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिससे रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े मॉल तक कैशलेस लेन देन आसान हुआ है। जनधन, आधार और मोबाइल की तिकड़ी ने बैंकिंग को हर नागरिक की जेब तक पहुंचा दिया है। सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे बिना किसी बिचौलिए के लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचता है। डिजिटल दस्तावेज की बात करें तो डिजिटल इंडिया पोर्टल के तहत डिजी लॉकर और उमंग जैसे ऐप ने सरकारी सेवाओं और प्रमाण पत्रों को पूरी तरह से पेपरलेस बना दिया है। भारत नेट पहल के माध्यम से देश की लाखों ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों तक डिजिटल सेवाएं पहुंच रही हैं। पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के जरिए करोड़ों ग्रामीणों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित किया गया है।

बाजार फिल्म का भी आप गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाज़ों में। गीत लिखा था मखदूम महीउद्दीन ने और संगीत खयाम का था। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति अंशु को, नमस्कार।

0: हमारे श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: स्वीकार करना ही इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और बिंदु का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालाउथ वितिदसन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today held talks with President of United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. He arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome, with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Both the leaders discussed energy cooperation and bilateral trade high amid global supply disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. In his opening remarks, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on the UAE, describing them as completely unacceptable.
5: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विनम्र का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने
4: After concluding his UAE visit, the Prime Minister is now en route to the Netherlands on the second leg of his visit. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Addressing the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 in New Delhi, Dr. Jaishankar said, "The breadth of the meeting reflects the importance that all leaders attach to strengthening multilateral cooperation in a rapidly changing world." He further said there is urgent need to reform the international financial architecture. Dr. Jaishankar also met Foreign Minister of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. In a social media post, Dr. Jaishankar said that with his Iranian counterpart, he discussed the situation in West Asia and its implications. He said they also exchanged views on bilateral issues of mutual interest. He also appreciated Mr. Araghchi's participation in the BRICS Foreign Ministers Meeting 2026. Foreign Minister of Iran, Abbas Araghchi, has said that India can play a greater role for peace in West Asia. Addressing a press conference in New Delhi today, Mr. Araghchi said there is no military solution to anything related to Iran. He said Iran is ready to help pass all vessels through the Strait of Hormuz. Mr. Araghchi added that the situation in the Strait of Hormuz is very complicated now. He said there cannot be any solution other than a negotiated settlement on the West Asia crisis. The Iranian foreign minister said that Iran will welcome any constructive role by India. UN Defence Minister Rajnath Singh laid foundation for Advanced Medium Combat Aircraft AMCA program facility at Puttaparthi in Sri Satya Sai district of Andhra Pradesh along with Chief Minister N. Chandrababu Naidu today. Addressing the gathering, the Defence Minister said the newly launched defence projects would strengthen national security, accelerate industrial growth and create large-scale employment opportunities for youth. West Bengal government has suspended three IPS officers in connection with the RG Corps Medical College rape and murder case. Former Commissioner of Kolkata Police Vinit Goel, former Deputy Commissioner Central Indira Mukherjee and former Deputy Commissioner North Abhishek Gupta have been suspended today due to alleged dereliction of duty, offering money to the victim's parents and conducting media briefings without government authorization. Chief Minister Subhendu Adhikari informed the media that a departmental inquiry would be conducted against them by the state government. The Supreme Court today announced a series of fuel conservation measures, including virtual hearings, carpooling and work from home. The move is in line with the centre's broader push to cut fuel consumption amid the ongoing West Asia crisis. In a circular issued by Secretary General Bharat Parashar, the Apex Court said the matters listed on miscellaneous days as well as matters taken up during partial working days will now be heard only through video conferencing until further orders. India's total exports comprising merchandise services are estimated at $80.8 billion in April 2026, registering a robust growth of 13.6% over April last year. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम झारखंड।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रेम सिंह पुरती और साथियों की आवाज़ में वो लोकगीत। इसके साथ ही झारखंड के लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। जोहार।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा यूएई देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अबुधाबी नगरे ऊर्जा सहकारस्य द्विपक्षीय व्यापारस्य च विषये चर्चां कृतवन्तौ। उभौ नेतारो रक्षा पेट्रोलियम निवेशादि विषये प्रमुखानां संधिपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतवन्तौ। एस जयशंकरः 26,000+ वर्षे ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य सभायां प्रभावपूर्ण बहुपक्षवादं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवान्। एनटीए इति अभिकरणं जून मासस्य 21 दिनांके 26

0: 2023 नीट यूजी परीक्षा पुनः आयोजयिष्यति। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानेन परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितम्। भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसुः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्वाचितः। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरातस्य यूरोपीय देशानां च षड् दिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे आबुधाबी नगरे अस्ति। यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन विमानपत्तने तस्य स्वागतं कृतम्, औपचारिक सम्मानश्च प्रदत्तः। यदा तस्य विमानम् एमिरती वायुक्षेत्रं प्रविष्टं तदा संयुक्त अरब अमीरातस्य F-16 युद्ध विमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु वार्ता कृता। पश्चिमेशियायां प्रचलिते द्वन्द्वेन सम्बद्धानां वैश्विकापूर्ति समाह्वानानां मध्ये एषा वार्ता अभवत्। स्वस्य प्रारम्भिके भाषणे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना यूएई देशे सद्यः एव जातानां आक्रमणानां दृढतया निन्दा कृता।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्र का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यमुं भ्रातेति शब्देन संबोधयन् सः कठिन काले यूएई नेतृत्वेन प्रदर्शितस्य धैर्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अमीरात देशाय भारतस्य समर्थनं पुनरपि प्रतिपादितवान् तथा च वर्तमान वैश्विक संघर्षस्य काले संवादः कूटनीतिः चैव एकमात्रः समाधानः अस्ति।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्रे युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं सर्वैः सहभागिभिः सह परिणामकारी बहुपक्षवादस्य लक्ष्यस्य प्रगत्यै प्रतिबद्धमस्ति। नवदिल्ल्यां 2023 ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय दिवसस्य मुक्त सम्मेलनं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् अस्य समूहस्य विस्तारितं सहभागित्वं द्रुतगत्या परिवर्तमानस्य वैश्विक सन्दर्भे बहुपक्षीय सहयोगानां सुदृढीकरणाय सर्वेषां नेतॄणां महत्वबोधं प्रतिबिम्बयति। सः इदमपि अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संरचनायाः परिष्कारः अत्यावश्यकः अस्ति। ततः पूर्वं डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां ईरान देशस्य विदेश मंत्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह मिलितवान्। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभौ नेतारौ पश्चिम एशियायाः स्थितिं तस्याः प्रभावाञ्च चर्चितवन्तौ। द्विपक्षीय विषयेषु परस्पर हित सम्बद्ध विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानम् अपि कृतवन्तौ। ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडले 2023 श्री अराघची वर्यस्य सहभागितायाः अपि तेन प्रशंसा कृता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य क्यूबा देशस्य विदेश मंत्रिणा ब्रूनो रोड्रिग्स पारिल्ला इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले प्रकाशिते संदेशे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् स्वास्थ्यं, विकास सहभागित्वं, क्षमता निर्माणं इत्यादिषु विषयेषु सहयोग सम्बद्धां चर्चाम् उभौ नेतारौ अकुरुताम्। उभयोः देशयोः विदेश मन्त्रालयोः मध्ये नियमित परामर्शाय सहमति पत्रस्य आदान प्रदानमपि अभवत्।

आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी ग्रामीण भाई बहनों को नीलू का जोहार। श्रोताओ, हमारा और आपका संबंध इतना पुराना है कि लगता है हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। आज जबकि हम विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें हम की जगह मैंने ले लिया है और अपने मैं को संतुष्ट करने के लिए हम परिवार से दूर होते जा रहे हैं। भाई बहनों, परिवार किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि यहीं बच्चों के पालन पोषण, अच्छे संस्कारों और सामाजिक विकास की पहली नींव होती है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के लिए समय ही नहीं बचता। आज के दिन यानी 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाए जाने का एक ही उद्देश्य है, भले ही हम अकेले सफलता के ऊंचे पायदान पर पहुंच जाए, पर परिवार के बिना अधूरा है। परिवार में दुख बांटने से घटता है तो सुख बांटने से बढ़ता भी है। भले ही रसोई में पकवान ना बने, सोने के लिए अलग अलग कमरे ना हो, पर मिलजुल कर रहने से हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और अपनी सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़े रहते हैं। ग्रामीण श्रोताओं, परिवार का महत्व हमारे भारतीय समाज में बहुत ही ज़्यादा है, ये तो आप भी मानते हैं, खास करके आपके ग्रामीण परिवेश में।

ग्रामीण श्रोता, भारत सरकार की मुख्य कृषि विस्तार योजनाएं आत्मा यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि अनुसंधान और नए तकनीकी को प्रयोगशाला से निकालकर आप किसानों तक पहुंचाना है। ये योजना राज्य सरकारों की मदद से जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से चलाई जाती है। श्रोता, इस योजना के माध्यम से आप कृषि के आधुनिक तरीके, उन्नत बीजों और बेहतर उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानेंगे और प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। किसान भाई बहनों, इस योजना के माध्यम से आपके और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधा संपर्क बन सकता है। इसके लिए कृषि मेला, फील्ड प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। खेती बंधुओं, भारत विस्तार योजना केंद्र सरकार द्वारा आपके लिए ही लॉन्च किया गया है। ये अत्याधुनिक AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हमेशा एक डिजिटल कृषि विशेषज्ञ के रूप में आपके मोबाइल पर उपलब्ध रहता है, जिसके जरिए आप मौसम का पूर्वानुमान, मंडी भाव, कीट प्रबंधन और मिट्टी की सेहत जैसी जानकारी अपनी स्थानीय भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण भाई बहनों, अगर आप चाहें तो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-180-155-1 पर कॉल करके खेती से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान कृषि विशेषज्ञों से सीधे प्राप्त कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुन ले, 1800-180-155। ग्राम श्रोताओं, इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।

ग्राम श्रोताओं, हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की आगामी डिजिटल जनगणना 2027 का मुख्य आदर्श वाक्य है, जो देश के विकास और नीति निर्धारण में हर नागरिक की भागीदारी को बताता है। किसान भाइयों, ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया पहली बार आज समाप्त होगी और दूसरी प्रक्रिया 16 मई से फिर शुरू होगी, जो मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना के साथ दो चरणों में पूरी होगी। पहली बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगा। आप sec.cenius.gov.in के माध्यम से स्वगणना कर सकते हैं। श्रोताओं, अफवाहों से बचें। आपके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह से गोपनीय और सुरक्षित रखी जाएगी। इसका उपयोग केवल योजना और नीति निर्माण के लिए ही किया जाएगा। जनगणना का डेटा सरकारी योजनाओं से नाम जोड़ने या हटाने से संबंधित नहीं है, इसलिए बिना डरे स्वगणना में भागीदार बने। किसान भाई बहनों, आपको बस इतना ही करना है कि जब प्रगणक आपके घर आए तो सही जानकारी दे। आप चाहे तो sec.cenius.gov.in के माध्यम से खुद भी फॉर्म भर सकते हैं।

ग्रामीण भाई बहनों, सेहत मिशन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक संयुक्त पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि को स्वास्थ्य और पोषण से जोड़ना है। इसका लक्ष्य हमारी रोज परोसी जाने वाली थाली में सुधार करना है, हमारे रसोई को प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षक और दवाखाने में बदलना है, यानी हमारे भोजन में आयरन, विटामिन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है और सभी को कुपोषण से बचाना है। खेती भाइयों, इस मिशन का उद्देश्य पोषण से भरपूर फसलों और खेतों को बढ़ावा देना है, ताकि लोगों को प्राकृतिक और पौष्टिक आहार मिल सके।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार और जीवन रक्षक उपाय, इस विषय पर आज जानकारी देने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर अग्निलाल गुप्ता। तो आइए सुनते हैं उनकी से ली गई जानकारी।
3: श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में डॉक्टर अग्निलाल गुप्ता जी को, जो स्थानीय अस्पताल में इमरजेंसी फिजिशियन के रूप में कार्यरत हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार कैसे किया जाए और कैसे उनका जीवन बचाया जाए। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, जैसा कि जो आपका क्षेत्र है काम करने का, वो है इमरजेंसी फिजिशियन के रूप में, तो इमरजेंसी फिजिशियन के रूप में आपको अमूमन हर दिन किस तरह के पेशेंट देखने को मिलते हैं या किस तरह से आपको उनका उपचार करना होता है, आरंभ में पहले इस बारे में कुछ बताएं।
4: डिफरेंट सीजन में अलग अलग बीमारियों का पेशेंट ज़्यादा आता है। जैसे जाड़ा में पेशेंट आता है, आपका दम्मा का पेशेंट, उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हार्ट अटैक बोला जाता है, सीवीए जिसको सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं, जैसे स्ट्रोक, ये सब पेशेंट ज़्यादा आपका इस मौसम में आता है। बाकी आपका जैसे बरसात में डायरिया केसेस बहुत ज़्यादा होता है, फीवर केस ज़्यादा है, उसके बाद गर्मी में लू केसेस बहुत ज़्यादा होता है, हीट स्ट्रोक, ये सब बहुत पेशेंट आता रहता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट।
3: तो ये बताएं कि जैसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जो होते हैं, उनको अस्पताल ले जाने के क्रम में, मतलब जब तक वो अस्पताल नहीं पहुँचते हैं, चिकित्सक उनको नहीं देख पाते हैं, तब तक हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से उनका प्राथमिक उपचार करना चाहिए?
4: देखिए, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मान लीजिए कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है, ज्यादातर लोग को मालूम नहीं है एक्चुअली क्या करना चाहिए। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ और मान लीजिए खून बह रहा है बहुत जगह, उस जगह में पहला चीज तो हमको खून बंद करना पड़ेगा, है? और खून कैसे बंद करेंगे, हम लोग बोलते हैं फिंगर टिप से उस जगह में प्रेस करना। इसके बाद क्या है, अगर कपड़ा उपड़ा रहेगा किसी का, उसको अच्छे से बांध देना ताकि वो खून बंद हो जाए, वो बहना बंद हो जाए। इसके बाद मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ, उसमें फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो फ्रैक्चर को ताकि वो ज्यादा माने मूवमेंट ना हो, उसको एक तो फिक्स करता है। अक्सर देखें, लोग जानते भी है, अक्सर देखें कि उसको कुछ स्केल या कुछ लकड़ी का कुछ ये सपोर्ट देके उसको बांध के लेके आता है डॉक्टर के पास। और मान लीजिए कोई पेशेंट का हेड इंजुरी तो बहुत ही आता है हॉस्पिटल में। हेड इंजुरी पेशेंट को जैसा तैसा मूवमेंट करना बहुत रिस्क हो जाता है, क्योंकि हड जो आपका
3: सर का
4: नीचे जो आपका

0: पेट का हड्डी जो होता है उसमें अगर चोट आता है और उसको हम ज्यादा मूवमेंट करवाएंगे, उसमें क्या होता है, बहुत रिस्क हो जाता है, ब्रेन में इफेक्ट होता है, इस कारण से उसको फिक्स करना है।
1: मतलब उसको ज्यादा हिलना
0: हाँ,
1: हिलाना
0: लेकिन
1: डुलाना
0: लोगों
1: है।
0: को तो ये सब मालूम नहीं है। तो बात है कि उसमें कुछ स्पाइनल बोर्ड रहता है, जैसे कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, उसका कहाँ कहाँ चोट लग सकता है, सर में लग सकता है, आँख में लग सकता है, छाती में लग सकता है, आपका पेट में लगता है, ये सब ऊपर से हम देखते हैं कि आपका चोट लगा है, लेकिन अंदरूनी जो चीज़ है वो हम कैसे
1: देख
0: करेंगे,
1: सकते
0: वो
1: हैं।
0: ब्लड प्रेशर, पल्स, ये सब देखने, उसका कैसा सांस चल रहा है, उसका कॉन्शियसनेस लेवल वो कैसा है, वो सब देख के हमको पता चलेगा कि क्या स्थिति है। हेड इंजुरी रहता है तो उसको हम लोग सोचेंगे कि स्पाइनल इंजुरी भी हो सकता है, इस कारण से इसको फिक्स करना बहुत जरूरी है
1: सर को हील
0: ताकि ज़्यादा मूवमेंट ना
1: और
0: हो।
1: अगर ब्लड खून बह रहा हो तो उसको किसी भी तरह से हाथ से प्रेस करके या
0: प्रेस
1: फिर
0: करके,
1: कपड़े से
0: बैंडेज करके,
1: बैंडेज
0: कपड़े से
1: करके भी उसको रोकने की प्रयास करना
0: उसको
1: चाहिए। तो ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी श्रोताओं को। अब हम ये जानना चाहेंगे कि सड़क दुर्घटना के अलावा भी कई बार, जैसे रात में कोई बुजुर्ग है, हार्ट अटैक आ गया हो, या फिर घर में किसी कारणवश हाथ पैर जल जाता है किसी बच्चे का या बड़े का, तो वैसे स्थिति में क्या करना चाहिए? आपके अस्पताल पहुंचने से पहले प्राथमिक उपचार किस तरह से किया जाना चाहिए?
0: यूजुअली आजकल सबको एक बोला जाता है कि कुछ टैबलेट्स रखने के लिए, प्राथमिक जो टैबलेट्स होता है, एक एक टैबलेट दे देने से एटलीस्ट, वो मान लीजिए उसका हार्ट अटैक हुआ है तार हम उसी समय दे दिए तो हॉस्पिटल जाते जाते जो टाइम आपका गैप हो जाएगा उसको मदद करके आपको हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। आपको पेशेंट का जो पैनिक होता है उसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: पेशेंट को बैठाना है या सुलाना है, बस एक करके हम हॉस्पिटल जब पहुंचा देंगे तो
1: और
0: फिर
1: जलने कटने
0: कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर बर्न्स। उसमें स्प्रिंकल के, नॉट आइस बट कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से मान लीजिए हाथ में जल गया, हाथ को कोल्ड वाटर में काफी देर, 10-15 मिनट ये कर दीजिए, उसके बाद घर में बार्नल उर्नल रहता है या कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम और रहता है
1: उसको
0: तो
1: लगा,
0: उसमें लगा के फिर आप हॉस्पिटल
1: फिजिशियन के पास
0: पहुँच,
1: आइए।
0: और इमरजेंसी में ले जाना पड़ेगा।
1: और किस तरह के इमरजेंसी में हो सकते हैं घर पे, जिनको प्राथमिक उपचार के रूप में घर पे कुछ करना है और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास पहुंच
0: है,
1: जाना है?
0: एक तो है कि चोकिंग, खाते खाते मान लीजिए कोई अंदर में घुस गया है और चोक हो रहा है, उसको क्या है, एक तो मैनूवर होता है पीछे से पकड़ के ऐसा करके पेट का ऊपर से ऐसा थोड़ा ऐसा ऊपर ऊपर एक तो
1: झटका मारना।
0: झटका देना है, उसमें कभी कभी होता है कि वो निकल जाता है। और पीछे टैप भी कर सकते हैं, बच्चे लोग का अगर ऐसा कुछ होगा पीछे हम
1: पीछे से
0: टैप कर
1: थपथपा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि कुछ ना कुछ सावधानी बरतना है जब इमरजेंसी होता है घर में किसी भी प्रकार से, तो घबराना नहीं है, चिकित्सक के पास चले जाना है।
0: प्रैक्टिकल जो ये डॉक्टर या ट्रेन स्टाफ ही कर सकता है, क्योंकि जब ऐसा स्थिति आता है लोग बहुत घबरा जाता है।
1: आप उनको फौरन से फौरन नजदीक के अस्पताल या चिकित्सक के पास ले जाएं। इस भेंटवार्ता के अंत में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
0: रोड का जो ट्रैफिक रूल है फॉलो नहीं करते हैं, ये बहुत एक तो बड़ा बात है। ड्रिंक करके कभी ड्राइव नहीं करना चाहिए, ये सब बात बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी है कि आप लोग को भी जानना चाहिए कैसे कैसे पेशेंट को रिसीव करके कैसे हॉस्पिटल में पहुंचाना है। टीम वर्क है, जैसे आप ठीक से उस समय उसको रिसीव करके हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे तो डॉक्टर के और हॉस्पिटल के लिए भी काफ़ी सुविधा हो जाएगा।
1: उसमें
0: मान
1: मदद,
0: लीजिए 1 घंटा लगता है कोई जगह में एक्सीडेंट हुआ और खून बहते बहते बहते पेशेंट का बीपी नहीं मिल रहा, शॉक में चला गया, तब
1: और
0: तो आप उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और इसके लिए हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार और जीवन रक्षक उपाय, इस विषय पर अभी आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अग्निलाल गुप्ता।

0: किसान भाई बहनों, गर्मी पड़ रही है, ऐसे में आपके खेतों में लगी फसलों को विशेष देखभाल की ज़रूरत है। गर्म फसलों को भीषण गर्मी और लू से बचाने के लिए समय पर सिंचाई, उचित मल्चिंग और खरपतवार नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाई बहनों, पौधों की जड़ों में नमी बनाए रखने के लिए भोर या शाम को सूरज ढलने पर ही सींचे। दोपहर की चिलचिलाती धूप में पानी देने से बचे। पानी की भारी कमी वाले क्षेत्रों में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग आप कर सकते हैं। इससे जड़ों तक पानी सीधे पहुंचेगा और पानी की बचत होगी। मिट्टी को नमी को बनाए रखने और वाष्पीकरण से बचाने के लिए पौधे के चारों ओर पुआल, सूखी घास या प्लास्टिक मल्च का उपयोग आप कर सकते हैं। खेतों में उत्तर पश्चिम किनारों पर गर्म हवा से बचाव के लिए पेड़ या टाट लगाए। खेतिहर बंधुओं, इस मौसम में माहू और सफ़ेद मक्खी का प्रकोप अधिक होता है। इनसे बचने के लिए नीम का तेल या कृषि विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई उचित कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। इस समय अपने खेतों में लगे मूंग, उड़द, लोबिया और सब्जियों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। इससे खरपतवार खत्म हो जाते हैं और मुख्य फसल के पौधों को हवा और पानी आसानी से मिलता है। किसान भाई बहनों, गर्मी के स्ट्रेस से पौधों को बचाने के लिए संतुलित पोषण दें। यूरिया का छिड़काव या पोटाश युक्त उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच करवा कर ही करें, तभी फसल को फायदा पहुंचेगा।
1: प्रिय जिला वासियों, जोहार। मैं नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिले वासियों से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी।

ग्राम श्रोताओं, आइए एक नज़र डाले बाजार भाव पर। कृषि उत्पादन बाजार समिति परसुडी जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार उष्णा चावल का आज का बाजार भाव रहा 5,870 रुपये से लेकर 5,888 रुपये प्रति क्विंटल। अरवा चावल का भाव रहा 5,890 रुपये से लेकर 6,280 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं दालों की बात करें तो अरहर दाल का भाव रहा 12,290 से लेकर 12,349 रुपये। मसूर दाल का भाव रहा 7,987 रुपये से लेकर 8,998 रुपये और मूंग दाल का 11,534 रुपये से लेकर 11,875 रुपये। गेहूं का आज का बाजार भाव रहा 3,632 से लेकर 3,875 रुपये। आलू का बाजार भाव रहा 1,680 से लेकर 1,756 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं सरसों तेल की बात करें तो एक टिन सरसों का तेल रहा का बाजार भाव 2,559 रुपये और रिफाइंड तेल का भाव रहा 2,335 रुपये प्रति टिन। एक क्विंटल प्याज का बाजार भाव रहा 2,375 से लेकर 2,450 रुपये प्रति क्विंटल। गुड़ का बाजार भाव 3,550 से लेकर 3,900 रुपये प्रति क्विंटल और चीनी का 4,500 से लेकर 4,600 रुपये प्रति क्विंटल। खीरा का बाजार भाव रहा 2,800 से लेकर 2,890 रुपये प्रति क्विंटल और एक पीस नींबू का बाजार भाव 5 रुपये। एक कांदी किले का बाजार भाव रहा 300 रुपये। किसान भाइयों, यह था आज का बाजार भाव।

किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। सुनेंगे चंद विज्ञापन और विचारों के बाद शाम 7 बजे से प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचत को लेकर उठाया बड़ा कदम। वर्चुअल सुनवाई और कार पुलिंग समेत कई उपाय लागू। राज्य में जनगणना 2027 का अहम चरण कल से होगा शुरू। रांची सहित सभी जिलों में 14 जून तक चलेगा डोर टू डोर मकान गणना और हाउस लिस्टिंग अभियान। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्रेजरी घोटाला की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। खूंटी में 1400 मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। और

0: झारखंड में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 17 और 18 मई को तेज आंधी और बारिश का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पुलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। यह निर्णय ईंधन की खपत कम करने के लिए केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। ये उपाय पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक दबावों को देखते हुए नागरिकों और संस्थानों से ईंधन की खपत कम करने और अनावश्यक खर्च से बचने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के कुछ दिनों बाद किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है।
1: यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
0: राज्य में जनगणना 2027 का अहम चरण कल से शुरू होगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल से 14 जून 2026 तक शहर में डोर टू डोर मकान गणना और हाउस लिस्टिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर मकानों, परिवारों और रहवासियों से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे। इधर रांची नगर निगम द्वारा जनगणना कार्य में लगे पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के बीच आधारित किट का वितरण किया गया। इधर गुमला जिले के उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी दिलेश्वर महतो ने कहा कि जनगणना देश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से नीतियों के निर्माण, संसाधनों के समुचित वितरण और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड ट्रेजरी महाघोटाले को राज्य में संगठित भ्रष्टाचार और सरकारी धन की सुनियोजित लूट का गंभीर मामला बताया है। उन्होंने दावा किया कि अब तक करीब 14 जिलों में ट्रेजरी से लगभग 130 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले सामने आए हैं, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता की आशंका है। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले की CBI जांच कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। खूंटी के बिरसा कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 2 दिवसीय प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हो गया। समारोह के दूसरे दिन 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब 1400 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि युवा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं।

0: सीजन लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। आने वाला कल की जिम्मेदारी को लेने के लिए अपने आत्मविश्वास के साथ प्रयत्न आगे करते रहे।
1: राज्य के बहुचर्चित ग्रामीण विकास विभाग टेंडर घोटाला मामले में आरोपी अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने आज रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए पासपोर्ट जमा करने और न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची स्थित दूरदर्शन केंद्र में पीआईबी रांची द्वारा अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पीआईबी रांची भुवनेश्वर के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने किया। बैठक में दूरदर्शन, यूआईडीएआई, सीसीएल, एनटीपीसी, रेलवे और नाबार्ड समेत विभिन्न केंद्रीय

0: संस्थानों ने अपनी उपलब्धियों और जनसंचार गतिविधियों की जानकारी साझा की। वक्ताओं ने स्थानीय भाषाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी योजनाओं एवं सूचनाओं को आम लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यालय प्रमुख DC हेम्ब्रम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव पद पर नवप्रणत अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर नवप्रणत अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे जनहित, सुशासन और विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आज रांची में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश मिश्र ने संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और रणनीतियों की जानकारी साझा की।
1: स्थानीय समस्याओं में भी बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जो स्थानीय लोग जूझते रहे, तो इन सारे चीजों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम किसानों की समस्याओं के साथ साथ स्थानीय समस्याओं को लेकर के प्रखंड कार्यालय में बहुत बड़ा धरना का आयोजन करेंगे और हम जनता की समस्या के समाधान के लिए डिमांड करेंगे। सरकार अपने ही किए गए वादों को पूरा करे, ये बात हम सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं।
0: सरायकेला खरसावा जिले के खरसावा मुख्य मार्ग स्थित गोविंदपुर मोड़ पर जल्द ही आधुनिक बस पड़ाव की सुविधा उपलब्ध होगी। जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने कहा कि इस परियोजना से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ साथ जिला परिषद के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
2: गोविंदपुर ग्राम में यहाँ बस स्टैंड बनने से आसपास के सभी ग्रामीणों को इसका सुविधा होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ आवागमन का भी यहाँ सुविधा होगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि ये बस स्टैंड जो तय समय है उसी के अंदर इसको पूरा करना है। इस कार्य के लिए दोनों सांसदों को इसका आवंटन किया गया है।
0: रांची में 17 मई को आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने जिले के 64 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज रांची सहित 14 जिलों में तेज हवा गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। इधर राजधानी रांची सहित कई जिलों में दोपहर बाद से रुक रुक कर बारिश जारी है। वहीं लोहरदगा में आज आए तेज आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने कल राज्य के उत्तर पश्चिम और उससे सटे उत्तरी हिस्सों को छोड़कर अन्य जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचत को लेकर उठाया बड़ा कदम। वर्चुअल सुनवाई और कार पुलिंग समेत कई उपाय लागू। राज्य में जनगणना 2027 का अहम चरण कल से होगा शुरू। रांची सहित सभी जिलों में 14 जून तक चलेगा डोर टू डोर मकान गणना और हाउस लिस्टिंग अभियान। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्रेजरी घोटाला की CBI जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। खूंटी में 1400 मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। और झारखंड में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 17 और 18 मई को तेज आंधी और बारिश का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता।
1: महागांव में वहाँ ठाकुर गंगती में विधायक ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पिछले दिनों एसआईआर के

0: में हो सही जो मतदाता है वो छूटे नहीं, यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग यह सुनिश्चित करें कि हम लोग अपने वोटों की रक्षा कर पाए और उसमें प्रशासन और पीएलए है वो आप लोगों के साथ काम करेंगे।
1: महागामा विधायक सह ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने महगामा प्रखंड के परसा गांव में सामुदायिक आधारित क्लाइमेट स्मार्ट अवसंरचना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्घाटन के माध्यम से क्षेत्र के 60 से 70 एकड़ जमीन वाले किसानों को सुविधा मुहैया होगी। सोलर सिस्टम आधारित इस परियोजना में जीएसपीएल एवं प्रदान संस्था के सामूहिक रूप से सहयोग है। इस दौरान मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा,
2: कैसे पानी की व्यवस्था सिंचाई के लिए किसानों को उपलब्ध हो इसका एक प्रयास है। जीएसएलपीएस और प्रधान ने मिलकर परसा गांव में सोलर लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट का हस्तांतरण किया है। अपने सीएलएफ की राशि प्रधान का सहयोग लेते हुए उसको आज पूर्ण किया है, जिससे करीब 62 एकड़ जमीन इनके गांव का सिंचित हो गया पूरे साल के लिए। मैं इसके लिए परसा गाँव की सभी दीदियों को बधाई देती हूँ।
1: गोड्डा जिले के बुआरीजोर प्रखंड में दो पहाड़िया आदिवासी महिला की मौत का कारण झोलाछाप डॉक्टर बना है। 10 दिन पहले प्रसव कराने आई पहाड़िया महिला रूबी मालतो के ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति बिगड़ गई। घटना के बाद महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, दौरान महिला की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस घटना के ठीक 7 दिन बाद ही बुआरीजोर के कुसुम घाटी में झोलाछाप चिकित्सक के चक्र में आदिवासी महिला की जान चली गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गुरुवार की सुबह धर्मी पहाड़िन को राजेंद्र शाह नामक चिकित्सक ने टाइफाइड की वजह बताकर सुई लगा दिया। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई और महागामा रेफर अस्पताल लाने के क्रम में महिला की मौत हो गई। आरोपी चिकित्सक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोड्डा जिले में लगातार सड़क हादसे को देखते हुए प्रशासन एवं पुलिस की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए गोड्डा एसपी मुकेश कुमार के नेतृत्व में रोड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अडानी समूह की ओर से भी आवश्यक पहल की गई। एसपी मुकेश कुमार ने लोगों को सीट बेल्ट, नशा कर वाहन न चलाने, हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने आदि की सलाह देते हुए लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि वो अपनी जान केवल इसी माध्यम से बचा सकते हैं।
3: लोगों में यह लगातार देखा जा रहा है कि वो यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से अधिकतर एक्सीडेंट हो रहे हैं। हर एक थाना में इंस्ट्रक्शन दिया गया, हर एक पेट्रोलिंग पार्टी उनको भी नहीं इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रैंडमली किसी भी जगह पे चेकिंग अभियान चलाएंगे। कोशिश में है कि लोगों के दिमाग में यह बात चले, अगर सड़क पे चल रहे हैं तो किस किन नियमों का हमको पालन करना है ताकि जो बढ़ता हुआ दुर्घटना है कम किया जा सके।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर।
4: अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले में आजकल अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। आइए सुनते हैं बंगला कार्यक्रम।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे बंगला कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन शुक्रवार है, शाम के 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं साप्ताहिक परिवार कल्याण पत्रिका कार्यक्रम कल्याणी।

स्वास्थ्य परिवार कल्याण पत्रिका कल्याणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार जोहार। श्रोताओं, यूं तो बदलते हुए इस दौर में सबसे सुखद यही है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम अपने परिवार के साथ एक सुखद स्वस्थ जीवन बिता सकें। आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे सुख सुविधाओं के साधन भी हैं और स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सारे फैसिलिटीज हमारे आसपास हैं, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद कई सारी ऐसी व्याधियां हैं, कई ऐसे रोग हैं जिनके शिकार हम हो जाते हैं। इसमें एक सबसे चिंताजनक बीमारी है HIV। यह पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी एक बहुत ही चिंताजनक विषय बनकर हमारे बीच उभरी है। डॉक्टरों के अनुसार अब तक 44.1 मिलियन लोगों की जान HIV से जा चुकी है। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। हालांकि हम HIV की प्रभावी रोकथाम, उसका उपचार कर सकते हैं और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम इसको फैलने से रोकें। यह बीमारी भयावह इसलिए है क्योंकि यह सीधे हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर आक्रमण करता है। यह शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाओं को

0: शाना बनाता है। इससे जो हमारी शक्ति होती है बीमारियों से लड़ने की, वह कमजोर हो जाती है और इसके कारण संक्रमण, तपेदिक और कुछ प्रकार के कैंसर से भी मनुष्य घिर जाता है। HIV संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों से फैलता है, जिसमें कि रक्त, माँ का दूध, वीर्य और योनि द्रव शामिल है। हमारे बीच यह एक भ्रम है या वहम की स्थिति है कि HIV चुंबन, आलिंगन या भोजन साझा करने से फैलता है, जबकि ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये माँ से बच्चों में फैल सकता है। श्रोताओं, इसके लक्षण हैं कि इसमें मरीज को बुखार आता है, सिर दर्द होता है, उसका गला खराब रहता है। धीरे धीरे HIV के शिकार मरीज का वजन घटता है, उसे दस्त होता है और खांसी की समस्या भी होती है। अब इससे बचने के बारे में अगर हम बात करें तो हमें नशीली दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। यौन संबंधों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। असुरक्षित इंजेक्शन, रक्त चढ़ाना या उत्तक प्रत्यारोपण में भी हमें सावधानी रखना है कि हम किसी HIV मरीज से ये सारे लाभ ना लें। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए जरूरी है कि हम उपचार से ज्यादा अपने आप को बचाएं और अपनी अच्छी तरह से देखभाल करें। डॉक्टर्स कहते हैं कि HIV संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, इसका उपचार दवाओं से किया जा सकता है जो शरीर में वायरस की संख्या को बढ़ने से रोकती है। ART HIV संक्रमण को ठीक नहीं करती। यह एक दवा है जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करती है ताकि वो संक्रमण से लड़ सके। तो श्रोताओं, HIV से रोकथाम की जा सकती है अगर हम अपनी विल पावर को मजबूत करें और साथ ही कुछ सावधानियों पर ध्यान देते हुए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत रखें। श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता, महिलाओं की आम स्वास्थ्य समस्याएं। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता रतन अग्रवाल और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, कल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और ये तो हम सभी जानते हैं कि महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं होती है। महिलाओं की क्या आम स्वास्थ्य समस्याएं होती है, आज हम बातें करेंगे इसी विषय पर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता रतन अग्रवाल। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपको भी महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: थैंक यू, नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे टू ऑल ब्यूटीफुल वुमेन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक महिला जब महावारी जब स्टार्ट होता है उनका से लेकर जब तक महावारी रुकता है और उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एक महिला को, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी।
1: आपका कहने का मतलब कि किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक।
2: यस।
1: तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले किस तरह की समस्या महिलाएं झेलती हैं?
2: पहले तो एज ऑफ मेनार्की 13 साल हम बोलते थे, बट अब क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि 10 साल में लड़कियों को महीना आ जा रहा है या 8 साल की लड़कियों को भी महीना आ जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज चेंज ऑफ लाइफस्टाइल के चलते जो हम फिजिकल वर्क करते थे वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, अब हम मैकेनिकल वर्क ज्यादा करते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लड़कियां सबसे पहले महीना आता है, सबसे पहले तो लड़कियों को एडुकेट करना चाहिए कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं कि आप जब भी इस एज में जाओगे तो आपको जब फर्स्ट पीरियड होता है तो बच्चियां घबरा जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी कि हर माँ को अपनी बच्ची को एडुकेट करना चाहिए इसके बारे में कि हाँ, ऐसा होता है, महीना आपको आएगा और उस समय आपको क्या क्या करना है
1: जी।
2: तो वो मेंटली पहले से प्रिपेयर रहती है, नहीं तो कुछ कुछ लड़कियों को मैंने ये भी देखा है कि वो एकदम डिप्रेस हो जाती है।
1: आपका कहने का मतलब यह है कि पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें प्राइमरी तौर पर अपने बच्चों को इस तरह की जानकारी देनी चाहिए।
2: बिल्कुल देनी चाहिए और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बताने चाहिए कि किसी किसी लड़कियों को क्या होता है कि पहली बार जब महीना आता है तो लड़कियों को वीकनेस फील होते हैं, ठीक है, कोई वॉमिटिंग भी करती है, किसी को खाना पीना बिल्कुल पसंद नहीं होता है इस टाइम पे,
1: ये टेंडेंसी आम होता है।
2: तो इसके लिए घबराना नहीं है, आप नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर माओ को इस चीज में, जैसे बहुत सारे विलेजर्स है, मतलब जो लोग गाँव में रहते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता है, वो सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, तो उन लोगों को नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए इस बारे में, उनसे डिस्कस कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है और इसे कैसे सुलझाया जाए। जैसे सपोज आपकी बेटी को पहली बार हो गया तो आप तो ये पहली बार देख रही है ना कि उसको वॉमिटिंग हो रहा है, वो खाना पीना छोड़ दिए हैं, बहुत ज्यादा दर्द में है, तो ये चीज से माएं भी परेशान हो जाती है। तो परेशान होने की चीजें नहीं है, आप नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो उससे परेशान नहीं होना है। उसमें हमें दवाइयां चलाते हैं या हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं तो उससे वो बिल्कुल मेंटल स्टेटस उनका ठीक रहता है। और उनको ये भी देखना है कि वो ग्रोइंग एज होता है उनके बच्चियों का, तो उसके लिए उनको अपने बच्चों का खाना पीना सही से रखना है, हरी सब्जियां, दूध, दाल और गुड़। गुड़ में आयरन होता है, आयरन सप्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ कुछ बच्चियां क्या होती हैं कि एक एक महीना तक उनको पीरियड्स आता ही रहता है क्योंकि हार्मोन्स इरेगुलरिटी होता है, तो उस केस में उनको आयरन सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स की बहुत जरूरत होती है। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है देने में कि आप अपनी बच्ची को दवाई दे रहे हैं, दैट इज नॉट अ पॉइंट। पॉइंट यह है कि अल्टीमेटली उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए।
1: तो फिर किशोरियां फिर माँ बनने की स्थिति में आती है, उस समय किस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है?
2: देखिए, अभी हम ये भी देख रहे हैं कि लेट मैरिजेस भी हो रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: और अर्ली मैरिजेस भी हो रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि लड़कियों को 17 साल की उम्र में बच्चे भी हो जाते हैं।
1: जी।
2: और किसी किसी को मैं ये भी देखी हूँ कि 30-35 साल में भी बच्चे नहीं हो रहे।
1: हाँ।
2: तो जो 17 साल की लड़कियां जिनको बच्चे हो रहे हैं, उसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा अपनी बच्चियों को एडुकेशन पे ध्यान दें, उनको पढ़ाए लिखाए, और 20 साल के बाद ही उनकी शादी करें। ये रिक्वेस्ट है, मतलब इसको अदर वे में नहीं लेना है।
1: तो एक तरह से अगर यदि हम देखें तो शहरों में तो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, ग्रामीण इलाके में जल्दी मैरिज हो रहा है।
2: तो वो लड़कियां ना उतना मैच्योर नहीं होती हैं उसको हैंडल करने के लिए। तो मेरी ग्रामीण वासियों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एटलीस्ट 20 साल की होने दीजिए अपनी बेटियों को, और उसके बाद शादी करें, और उनके बाद उनको बच्चे करने के लिए एनकरेज करें।
1: अगर हम स्वास्थ्य समस्याएं की बात करें तो निश्चित तौर पर महिलाएं जब बच्चा होता है फिर फैमिली में आती है तो अपना स्वास्थ्य का ख्याल वो नहीं रखती है, तो किस तरह की समस्याएं उस समय उत्पन्न होती
2: है? देखिए, क्या होता है कि जब महिला एक फैमिली में आती है ना, तो वो दूसरों के बारे में परवरिश ही हुआ रहता है कि वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचती है, अपने बारे में कम सोचती है। आप हर तरह के फैमिली में देखेंगे, चाहे वो ग्रामीण फैमिली हो चाहे वो शहर की फैमिली हो, ठीक है, तो महिला वो माइंडसेट ही होता है उनका कि नहीं, मेरे को अपना कम ध्यान रखना, अपने आप को प्रायोरिटी वो कम
1: देती है
2: और फैमिली मेंबर्स को। बट मैं ये बोलूंगी, टाइम चेंज हो चुका है, जब तक आप अपने फिट नहीं रहेंगी तब तक आप लोगों को स्वस्थ नहीं रख पाएंगी। तो आपको अपने पता होना चाहिए कि आप कैसे फिट रहेंगी। मैं ये सबसे बोलूंगी कि सबसे पहले आप हाफ एन आवर अपने रूटीन में लाइए कि आप अपने शरीर को देंगी, चाहे वॉकिंग के थ्रू, चाहे योगा के थ्रू, चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। जब आप सुबह उठती हैं तो सबसे पहले वो आधा घंटा आपका होना चाहिए।
1: जी।
2: उसके बाद अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। डाइट में ये नहीं बोलती हूँ कि आप कुछ भी मतलब सोच समझ के खाइए, वैसा नहीं है, बट अपने डाइट में हरी सब्जियां, दूध, दाल, ये सब इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। प्रोटीन की मात्रा आपके बॉडी में ज्यादा होनी चाहिए। बाकी आप जैसे डे टू डे लाइफ में जैसे खाती हैं वो खाइए, बट ये सबको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करके खाए। और नेक्स्ट मैं ये बोलूंगी कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको बच्चे होने के बाद कमर दर्द की समस्या स्टार्ट हो जाती है, हेडेक की समस्या स्टार्ट हो जाती है, वीकनेस लगता है, ये सब समस्याएं। तो ये सब के लिए मैं ये बोलूंगी आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो आपको एडिशनल सप्लीमेंट देंगे, बिकॉज वो सब डाइट से पूरा नहीं हो सकता है। तो एडिशनल सप्लीमेंट देंगे जो बहुत जरूरी होता है और वो आपके शरीर को ठीक भी रखता है।
1: जब महिलाएं मेनोपॉज को प्राप्त करती हैं, उस समय भी काफी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है, वो क्या क्या होता है?
2: देखिए, जब महिलाएं मेनोपॉज को करीब जाती हैं मेनोपॉज के, तो उनको बैक पेन, हेडेक, वीकनेस, हॉट फ्लशेस, गर्मी ज्यादा लगती हैं, ये सब तरह की आमतौर पे ये सब तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट वो आप गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गए तो वो मैं डिस्कस नहीं
1: करूंगा।
2: कमर दर्द, हॉट फ्लशेस, बहुत ज्यादा उनको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है औरतें, ये सब समस्या आमतौर पर आती है। लेकिन बहुत सारी लेडीज इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है कि ये इनके साथ क्यों हो रहा है, बिकॉज उनको नॉलेज नहीं है कि मेनोपॉज में ये सब नॉर्मल होता है। तो उस समय मैं ये बोलूंगी कि जब आपको ऐसा लग रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।
1: सीधा सा मतलब ये है कि महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है अपने स्वास्थ्य के प्रति।
2: बहुत ज्यादा, मैं ये बोलूंगी अपने स्वास्थ्य को पहले प्रायोरिटाइज करें, नेक्स्ट आप दूसरों का ख्याल रखें, पहले अपने आप को ठीक करें। और एक चीज और, फिजिकल तो मैंने बता दिया बट मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू आज की डेट में। महिलाएं किसी से कुछ खुलकर बता नहीं सकती हैं कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम है या उनके अंदर क्या चल रहा है, तो मैं ये भी बोलूंगी कि उनको मेडिटेट करने की जरूरत है या कुछ ऐसे संस्थाओं से जुड़े जो आपको लाइफ के

0: सही मार्ग दिखाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, जो बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, सब फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं बट मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखें, जब तक आपका मेंटल हेल्थ खुश नहीं रहेगा तो आपका फिजिकल हेल्थ कभी अच्छा नहीं रहेगा।
1: डॉक्टर साहिब, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, अंत में एक संदेश महिलाओं के लिए।
0: मैं बस यही बोलूंगी आज के दिन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल।
1: डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, महिलाओं की आम स्वास्थ्य समस्याएं। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता रतन अग्रवाल, और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी राजेश कुमार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म साथ साथ का ये गीत जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में। और इसी गीत के साथ स्वास्थ्य परिवार कल्याण पत्रिका कल्याणी से हमें दीजिए विदा। हम फिर मिलेंगे और करेंगे बातचीत सेहत संबंधी समस्याओं और उसके समाधान पर। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।

साप्ताहिक परिवार कल्याण पत्रिका कार्यक्रम कल्याणी अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिए बस कुछ ही पलों में।

एक आवश्यक सूचना। नीतीश कुमार सिंह उपायुक्त सरायकेला खरसावा समस्त जिले वासियों से अनुरोध करते हैं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से se.census.gov.in पोर्टल पर अपने और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। पोर्टल एक बार फिर सुन लें, se.census.gov.in। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक यानी आज तक स्वगणना के लिए खुली रहेगी। आपकी

गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए अपनी जिम्मेवारी निभाने की अब आपकी बारी है। सूचना समाप्त हुई।

यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मीरा शर्मा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में आपने सुना वारिस फिल्म का ये गीत। गीत के बोल वर्मा मल्लिक ने लिखे थे और धुन बनाई थी उत्तम जगदीश ने।

0: किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में आपने सुना तीन देवियां फिल्म का ये गीत। गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और धुन बनाई थी एस डी बर्मन ने। श्रोता इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अगला गीत सुनने से पहले ये संदेश, आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: संदेशों के बाद कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म वाह वाह राम जी का ये गीत। गीत के बोल देव कोहली ने लिखे थे और संगीत आनंदराज आनंद ने बनाई थी।

गुलजार की शब्द रचना थी और संगीत था A.R. रहमान का। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में आपने सुना धर्मवीर फिल्म का ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

के श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में आपने सुना फिल्म जिस्म 2 का ये गीत। गीत के बोल नीलेश मिश्रा ने लिखे थे और धुन बनाई थी डॉक्टर आर को मुखर्जी, रश्क अब्दुल बासित सईद ने। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म चोर मचाए शोर से।

आशा भोंसले की आवाज में आप सुन रहे हैं फिल्म चोर मचाए शोर का ये गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। और श्रोताओं, फिल्म संगीत से अब दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।

रात के 8:45 होने ही वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। सुनेंगे बस कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन

0: भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बम हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के

0: Good evening, listeners. Welcome to our program, Current Affairs. I'm Tina Jha. Today, we will be discussing about the Prime Minister's visit to five nations, strengthening India's global partnerships. The first leg of the visit began in Abu Dhabi, where in a special gesture, UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan personally received the Prime Minister upon his arrival, a reflection of the deep and enduring bonds of friendship between India and the UAE. Prime Minister Modi extended gratitude to President Nahyan for the warm reception, describing the UAE as his second home. Listen in.
1: आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां थी, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। मैंने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है।
0: The two sides also exchanged views on developments in West Asia and other major global issues. The visit witnessed several significant outcomes, with seven major agreements and arrangements announced. These include an MOU on strategic collaboration between Indian Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company. So to discuss the significance of these outcomes and what they mean for the future of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, we have with us two eminent guests, Professor Harsh V. Pant, Vice President, Observer Research Foundation, and Professor Anshu Joshi, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University. Thank you to both our guests for joining us on this program on Akashvani.
2: Let me begin,
0: before we proceed further into the discussion, let's listen to this special interview of Indian Ambassador to the UAE on the significance of India-UAE ties by Prasar Bharati correspondent Vinod Kumar.
3: The MOU on strategic petroleum reserves comes at a time of significant supply disruptions in West Asia. Master Deepak Mittal, how does this agreement specifically strengthen India's energy security?
4: Today, the visit of the Honorable Prime Minister, there were very strategic announcements. One

0: hence a transformative moment in India's ties with both West Asia and Europe.
1: Before we proceed further into the discussion, focusing on the second leg of the Prime Minister's visit, which is to the Netherlands, here's an interview of the Indian Ambassador to the Netherlands, Kumar Tuhin, who described the Prime Minister's visit to the country as a significant one, while speaking exclusively to Akashwani correspondent Sushrut Sharma. Aiye sunte hain iske pramukh ansh.
2: प्रधानमंत्री तीन दिवसीय यात्रा पर नीदरलैंड आ रहे हैं. इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारत के राजदूत श्री कुमार तुहिन सर. सर, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट?
3: यह यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमारे संबंध नीदरलैंड से बहुत मजबूत हैं. लेकिन यह एक ऐसा मौका होगा जबकि दोनों देशों के नेता नीदरलैंड में नई सरकार बनने के बाद पहली बार सामने सामने मिल रहे होंगे. तो इस मौके पर आज तक जो हमारी प्रगति हुई है उसको रिव्यू करना, हमारी जो प्रोग्रेस है उनको कंसोलिडेट करना और आगे एक नई दिशा देने का एक बहुत बढ़िया मौका है.
2: सर, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पे दोनों देश आपसी सहयोग के मुद्दों पे बात करेंगे और उनको और एक्सप्लोर करेंगे?
3: पहले से जो हमारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, और जो पानी का क्षेत्र है, और कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में तो पहले से ही बहुत कुछ काम हो रहा है. हम ये आशा करते हैं कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को मौका मिलेगा कि जो नए इमर्जिंग जो कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है या क्लीन एनर्जी का क्षेत्र है, मैरिटाइम कोऑपरेशन का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी हमारी आज की प्रगति को रिव्यू करना और हमें फिर एक नई दिशा और नए निर्देश देने का एक अवसर.
2: सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नीदरलैंड एक पायनियर है, उस क्षेत्र में हमारे यहाँ पे R&D के फील्ड में कुछ भारत में भी हो रहा है, तो क्या आगे हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कुछ संभावनाएं एक्सप्लोर करते हैं?
3: जी, नीदरलैंड्स विश्व की सबसे प्रख्यात सेमीकंडक्टर कंपनियों की जगह है और पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश की जो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भी बढ़ाने का काफी बड़ा काम है. तो इसलिए ये कम्प्लीमेंट्री एक तरह के हम लोगों का स्ट्रेंथ है और हमारी भूमिकाएं हैं, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि डच कंपनियां जो कि अभी भारत में मौजूद हैं लेकिन उनकी और बढ़ने की अभी आशा है और पोटेंशियल है, उसको हम लोग एक नए स्तर पर देखे जा पाएंगे.
2: सर, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी आजकल बहुत बात हो रही है. नीदरलैंड्स में एक पायनियर है लेकिन इंडिया भी इसमें एक उभरता हुआ लीडर नजर आ रहा है. सर, उस क्षेत्र में से कौन से फील्ड्स हैं जहाँ पे ये हमको बहुत बेनिफिट करेगा? हम सुन रहे हैं कि कुछ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में भी ग्रीन हाइड्रोजन का एक रोल है अदर देन एनर्जी सिक्योरिटी.
3: जी, सो नीदरलैंड्स क्लाइमेट के एरिया में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के इलाके में काफी बढ़िया करते हैं. हमारे देश में भी आपको पता है कि क्लाइमेट, वातावरण और साथ साथ कृषि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं. तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डच कंपनियों के पास जो उनकी जो तकनीक है, उनके पास जो आधुनिक तकनीक है, उनका जो ज्ञान है, उनको हम लोग भारतीय कंपनियों के साथ जोड़ सकें. यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को हम भारत के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, हमारे जो अनुसंधान संस्थान, उनसे जोड़ सकें ताकि हम दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअली जो बेनिफिशियल एक तरह का जो रिलेशन है उसको हम लोग ले पाएं.
2: सर, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल एनर्जी पे भी नीदरलैंड जाना जाता है, उस क्षेत्र में ऐसे कुछ उदाहरण जैसे इंडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ का शुरुआत किया है, उस तरह के उदाहरण यहाँ से जो हम तब से शोकेस कर सकते हैं?
3: प्रधानमंत्री जी की जो मिशन लाइफ है उसके संबंध में मैं कहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि हम लोग उसको देख सकते हैं और बहुत तरीके से हम लोग उसको अपने आप ही ला सकते हैं. जैसे अगर आपको उदाहरण दूँ साइकिल, तो साइकिल का इस्तेमाल यहाँ पे इतना बढ़िया है और इतना ज्यादा है कि आप दो शहरों के बीच भी, अगर वो 40-50-60 किलोमीटर दूर भी हो, वहाँ आप साइकिल चला के नहीं जा सकते. इसके अलावा आप अगर देखें यहाँ पे जितने इनोवेटिव तरीके से पानी का इस्तेमाल होता है, ये देश जो है सो समुद्र से कई मीटर नीचे होने के बाद भी आप पानी जब कभी बाढ़ होता या पानी की कभी शॉर्टेज होता या पानी सही स्थिति में नहीं होता, साफ नहीं होता, उन सब की तकनीक इनके पास है. तो मैं सोचता हूँ कि इन सबको भी हम अपने मिशन लाइफ में डिफरेंट जो उसके आयाम हैं, विभिन्न आयाम हैं, उनसे इनको जोड़ सकते हैं और भारत में हम लोग एक नया बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध हम लोग इसमें स्थापित कर सकते हैं.
2: धन्यवाद सर, आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
3: बहुत बहुत धन्यवाद.
1: Professor Joshi, from an Indian context, how can this partnership benefit our growth priorities? We've set ambitious goals for ourselves. We have a certain window in which we need to leapfrog towards development. And therefore, these partnerships with the smaller countries here in the region, but very, very technologically advanced, they can help us majorly in our growth priorities, isn't it?
4: Indeed. And when we look at Sweden, Tina, the A partnership that we have with Sweden focuses on technology partnerships, innovations, sustainability, and of course, strategic relations. And there have been high-level interactions between the two nations. The momentum has increased, of course, both bilaterally as well as multilaterally when we look from whole Europe's perspective. And the focused areas remain green transition, smart cities, AI, and healthcare. When we look at cooperation with and collaboration with India, so there has been a lead IT initiative also for industrial transition and expanding defense industrial collaboration with Sweden. So in the areas of innovation and technology, we are collaborating in digitalization, IoT, AI with Sweden, and there have been ministerial level discussions also in early January 2026. And these discussions focused on science, tech and space exploration and collaboration between the two nations. Then green energy remains a very important area. There's a high focus on climate initiatives. That's where Sweden is also contributing a lot. And that's where India-Sweden Industry Transition Partnership has started. And the key cooperation areas include renewable energy, green hydrogen, and different types of green economy projects. When we look at defense industrial cooperation, in 2019, a security agreement was signed between the two nations. So the collaborations are continuously growing. And Swedish firms like Saab, they have been investing in local manufacturing in India. When we look at economic partnership, strong investment ties with over 250 Swedish companies are now present in India. There's a focus on manufacturing, urban development, and of course, sustainable development in different cities. And diplomatic and strategic ties have already gone to the next level, wherein we can see different regular dialogues on different international issues also, and these collaborations that span different areas, different dimensions. So the focus now remains on elevating ties in the areas of space collaboration, novice technologies, and also city development. And there is a strategic alignment wherein we can see that this relationship is very important for both the countries from a technology partnerships point of view, for making supply chains more resilient, and digital transformation also. So this bilateral relationship between the two nations now has transitioned from traditional diplomatic or political ties to very modern, technology-oriented, futuristic, substantive partnership addressing future-oriented challenges. So that's where the relationship covers not only the novice areas of technology bilaterally, but also regionally as well as globally.
1: Okay, one last quick question, Professor Pant, to you from the India-Italy context, because the Prime Minister's last leg happens to be in Italy, with whom we've seen a renewed momentum in ties in recent years. So what concrete outcomes can we expect from the Italy leg of the Prime Minister's visit?
0: On Italy, certainly, as you would know, there has been a very differentiated engagement where Italy itself has looked at India through a distinct lens, you know, away from the larger European lens that it used to be. And there is a more strategic ambition in Italy now to play a larger role in the Mediterranean, for example, where India-Italy collaboration, strategic and defense collaboration, is certainly being looked at very, very carefully. Defense partnership with Italy is something that will continue to grow, and that we will see some of that reflected as an outcome of this visit as well. But I would also say that Italy, when it comes to investments and clean energy partnership, Italy is also very, very critical. By and large, what the momentum that this partnership has gathered, we are going to see that momentum being reflected during this visit. And I think the ambition that Italy now puts in its relationship with India, that ambition has started showing, whether we are looking at economic relations, where Italy today is India's fourth largest trading partner within the EU, whether it is the geopolitical alignment and strategic alignment between the Indo-Pacific and the Mediterranean, whether we are looking at cybersecurity, AI and renewable partnership, or whether we are looking at the defense industrial cooperation. There is a military cooperation plan which focuses on how can you bridge the gap as far as India's Atmanirbhar initiative is concerned and Italy's competence in aerospace and ship design is concerned. So I think we are looking at a relationship that is increasingly becoming ambitious, and we are going to see some of that ambition get reflected in the outcomes of this visit.
1: Absolutely. We'll keep a close track of what these significant outcomes will be, but broadly, from trade and technology to strategic cooperation, the expected outcomes of the Prime Minister's five-nation visit will play a very, very important role for our future diplomacy, for our growth priorities, but also for the global role that India is now playing. On that note, we'll have to call it a wrap on this edition of Current Affairs. Thank you once again, Professor Pant, Professor Joshi. Thank you for joining us. Well, so that brings us to an end of this program. Thank you to both our guests.

आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम करंट अफेयर्स अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में मैं हूँ साथ आपके आपकी दोस्त मीरा शर्मा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार और चलिए चलते हैं गीतों के सुरीले सफर पर।

लता मंगेशकर की आवाज में ये पहला गीत आपने सुना फिल्म इम्तिहान से। गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई थी।

प्यार ही प्यार, इसी फिल्म का ये गीत आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, हसरत जयपुरी के बोल और संगीत था शंकर जयकिशन का।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की युगल आवाज़ों में आपने सुना नया दौर फिल्म का ये गीत। गीत के बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे थे और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने।

फिल्म चौदहवीं का चांद का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। बोल लिखे थे शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी रवि ने।

छाया फिल्म का ये गीत आपने सुना, तलत महमूद की आवाज थी, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण के थे और धुन बनाई थी सलील चौधरी ने।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना फिल्म पूनम की रात का ये गीत। गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और धुन बनाई थी सलिल चौधरी ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी नगमा।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म दिल दिया दर्द लिया का ये गीत। गीत के बोल शकील बदायूनी ने लिखे थे और धुन बनाई थी नौशाद अली ने। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे निखिल बैनर्जी का सितार वादन, राग होगा चंद्रकौंस।

0: शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम आपको सुनवा रहे थे पंडित निखिल बैनर्जी का सितार वादन राग था चंद्रकांत। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 11 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हुरमुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है।

0: उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Almost free, open or safe Panayana. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Prime Minister Narendra Modi has said that government remains committed to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a report of a media house on cess or tax or surcharge on foreign travel. He said the report is totally false and there's not an iota of truth in it. The Prime Minister said there's no question of putting such restrictions on foreign travel. The Central Bureau of Investigation has arrested the kingpin.